0: ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଆଗେଇ ଯାଅ, କେତେ ଆଗେଇ ଯାଅ ପଛକୁ ଫେରି ତାହା ମାପି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ପୁଣିଥରେ ପଛେଇ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 6 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀର କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस

0: कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वैंस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मेक्सिको सिटी में खेले गए मुकाबले में कोलंबिया ने उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोता बंधुमाने कार्यक्रम शुणिछन्ति आकाशवाणी कटक केन्द्ररो आरंभ करुछु आजिर बन्दना। प्रथमे कण्ठदान करिछन्ति अञ्जली मिश्र, शिल्पीङ्क कण्ठरे गौर पट्टनायकङ्क रचना। नमो नमो हर हर हे शिवशंकर, क्षमा कर दोष मोर हे चन्द्रशेखर।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इक्कीस जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज़।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: पेरिस मैं इसे सातवें दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान। निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया

0: की अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देशभर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है।

0: सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरूद्व चलाए जा रहे अमरीकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में एफआईएच महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमरीका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होर्मुज खुला, तत्काल

0: समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द हैं, जंग खत्म, होरमोज खुला। तत्काल कम नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बच्चों में कुपोषण का कुचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message, Bonjour Modi or Hello Modi, and chants of Bharat Mata Ki Jai.

0: समृद्ध ओडिशार स्वप्नको साकार करिबा पई उभय स्वास्थ्य और शिक्षा दिगरे अनेक जुगांतकारी पदक्षेप ग्रहण करिछंती लोकंक सरकार।
1: सुस्थ ओडिशा पई आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना माध्यमरे कोटि कोटि लोक पाउछंती कैशलेस चिकित्सार सुविधा। आयुष्मान आरोग्य मंदिर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र उन्नतीकरण भली अन्यान्य पदक्षेप लोकंक कल्याण पई निया जाउछि।
0: सेहिभली शिक्षा क्षेत्र रे गोदावरी समिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय माध्यमरे ग्रामांचल रे गुणात्मक प्राथमिक शिक्षा रे उन्नति करा जाउछि। शिशु शिशु उपकृत ओ एससीबीसी छात्र छात्रिंक पई संरक्षण रहिछि। विद्यालय छात्र छात्रिंक पई मागणा बस यात्रा सुविधा एवं बाणीश्री दिशा स्वीकृति ओ सहाय भली योजना माध्यमरे शिक्षा क्षेत्रर विकास मध्य करा जायछि।
1: विकासर धारा ओडिशा सारा।
2: मन शांति रहिले शरीररे प्रफुल्लता खेलि जाय। मनर देह जाय जीवनर सुंदर संयोजना। ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ହିଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଧନ ଏହି ସଂସାରର। ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ସବୁ ସୁଖ ମିଳେ, ସବୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଥାଏ, ଭବିଷ୍ୟତ ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ।

0: ए, ए, ए सुन अरे सुनी पारुन ना कौन मो
1: हाँ
0: मो डाकुची
2: मते
0: संदेह कहीं की
2: संदेह नहीं जे माने मु भाबिली
0: आउ के अन्य कहा को डाकुची या तो
2: हाँ प्राय से या कारण ए कॉलेज रे मोर सेमिति के परिचित जीव ना तो तेनु
0: जन्म हेबा बेले मध्य समस्त समस्तंकर अपरिचित थांती परिस्थिति समस्त को परिचित कराए ए भली परिस्थिति रे थरे आम घरे घटी थिला माने थिवो निश्चय
2: हाँ मन अच्छी शीत दिन में मुझ फुंगुला देहरी जाइली बोली तुम्हें तुम साल्टी दे मो पाठ पढ़ा कथा भी पचारि
0: अपरिचित है कौटी
2: तुम चुक्ति काटिद उपाय मोर कहीं तेब एवं पचारि पारे कौन पाई डाकु
0: गहन कोलाहल भितर मन चाहूबा कथा उकिल प्रश्न को खोलाखोली भाव कह संभव
2: अरे चुप रही
0: ना ना ए से कृष्णचूड़ा गाछ पाख चल ना
2: कृष्णचूड़ा गाछ
0: हाँ मन को मनबार उपादान जगाए मत प्रेरणा दिए मतुआला कर भाव सृष्टि करे ए चल ना
2: मो सहित
0: संपर्क रखे असुविधा कौन तुम्हें शिक्षित सुस्थ सुंदर
2: ना तुम्हें मो विषय
0: जानी केवल तुम विषय नुह तुम बापा माँ परिवार सब विषय पर पूर्व व्यक्तित्व सत्ता को छपी पारे ना भर उज्जवल कर दिए आस ना
2: शुण अनुपा
0: ना
2: ना कौन
0: अपा नुहे केवल अनुपमा मु तुम सहपाठी अपा संबंधन प्रश्न उठू कौटी
2: तुम्हें आम बाबू को झील आम बापा पियन परमा गोछाई तर पु यही तो मो परिचय
0: परिचय प्रभेद शिक्षार्थी स्कूल कॉलेज रे न थाए जग थाए कर्म क्षेत्र रे मु से सब को किछि बुझे ना जहाँ बुझे प्रतिभा को हृदय को मनीष पड़िया को बस
2: तुमको कथा रे पारि हबने अनुपा
0: ना थाउ अपा जोड़िले मु स्वीकार करिबनी कह केवल अनुपमा
2: तमर अजाचित आदर मु बुझे छोट नीच क्षुण्य तमें जिते प्रशस्त उतार विराट बोली कही मत शक्ति साहस सहानुभूति जगह चाहिए भी मोर पट परिवर्तन होवार कौन सी संभावना ना
3: ना ना संपूर्ण असंभव
0: सब असंभव को संभव करिबा महतलोक पाखरे विचित्र नुह
2: विचित्र किंतु महक नथिबा लोक पाखरे महत्व खोजिबा

0: अरे अनुपमा जी
1: चमकी पड़ु कहीं की?
0: नहीं माने ए अचानक भाव रे तुम आसीबाटा
1: कांग्रेचुलेशन जणीमा पई तमे फर्स्ट क्लास फर्स्ट हिच
0: थैंक यू आ तुम्हारा
1: जस्ट नेक्स्ट
0: कांग्रेचुलेशंस
1: थैंक्स
0: अरे अरे
1: कोन हला
0: ए चेयर रे नबसे
1: बेड ऊपर बसि गेली एया त मते जोठी भलो लागिला सेठ बसिली तमरे इथरे कहिबर कोन अछि
0: अछि बोले तो बारण करूची

0: अरे अरे ओहो ये कौन कहीं आज चाह प्लेटा हाथ रू खसी पड़ला के जानी हयो कौन सुनु छ ना नहीं ओ अंजलि
1: कौन
0: अरे की मनरे चाहटा दे छलो के जानी प्लेटा हाथ रू खसी पड़ला जोगो को प्लेटा भांगिलानी सिना किंतु चाह खाइबा मजाटा भांगी गला अरे कौन करू छ कुआड़े गलो की
1: ओहो जाऊ छी
0: शीघ्र आस
1: मला मला मला चाटा हाथ रू खसी पड़ा ना कौन मो
0: अरे सही कथा तो इतने बड़ा पार्टी डाक कहली आउ फिर मत पचार छ कौन जोगोटा कौन आज अच्छे के जानी
1: जोगो तो निश्चय भलो अच्छे
0: हाँ तम नारी संगीत स्पष्ट सूचना दिया
1: पुरुखा पुरुखा लोके कहती तरल जिनस हाथ रू खसिले मंगल
0: थाउ थाउ थाउ मुझु कि बुझेना चाहटा मत बढ़े दे कुआर मारी गल कि
1: तमर पर जुआड़े मारी जावा कथा मारी जा चाह पर्व पर तुम द्वितीय पर्व
0: माने
1: हाँ देखु तुम परमा ठीक भाव धोई
0: बाबा बुझल तमें कलिजुगर जन पतिव्रता नारी अरे हाँ जी पायखाना सफा करने पर्यत स्वामी पे सजाग किंतु तमे एक भल भाव जानी थो अंजलि परमार भी को काम गलती ना जो
1: तम मो भाया खंडाधारे चलवा लोक प्रशंसा करती ठी हाँ शुण म
0: कौन
1: तमे तो डेरी रात टूर फेर मुझे पार्नी कथा कौन कि
0: हाँ टूर रु स्वामी फेर राति को स्त्री कि खाली कही पारती जहा क्या कही हुए कौन या तो कौन
1: कि चाकर पूजारी घरे भर्ती जी शुणु
0: अरे शुणु ना स्वामी स्त्री भीतर कथा सीटे कौन अच्छी क्या को कथा अछपा अच्छे कि मो अन्य इंजीनियर भाई नुह मो घर को घर परी देखी आदा खाइबा अन्न मान पी मो जात ना बुझल त्रेतयारे रामचंद्र थे आड़े रे मु माने इंजीनियर बंशानी महापात्र कौन बुझल तो
1: हेला बाबा हेला बाईसी वर्षीय जुवाक भाई खटांग पुराण बार करना बुढ़ा हवा को जाऊ रातिर कथा सका न कही दिन कथा शुण
0: यनु
1: आम बीए फर्स्ट क्लास अनर्स डिस्टिंक्शन सब पाई
0: अरे एते बेल जाए से कथा कही से गला कड़े
1: बिचारी अचिंता निदे आज सोई सोशो पिलाटा भारी चिंता रे थिला
0: अरे डाको ना टिके निद्रु उठे डाक मो पाख को शीघ्र डाक मुझे गेला कदे
1: दौची डाक दौची
0: हाउ अंजलि सते कौन बेस किसी आनंद मिली था मूर्ख पुओटे जन्म दे सुख आम जथेष जाओ जाओ जाओ जाओ प्लीज डाक डाक शीघ्र डाक हे प्रभु

0: हाय।
1: अरे अनुपमा थे?
0: गाड़ी रो हॉर्न एत्ते बजेली बुझी भी पारलन।
1: हॉर्न टा सुनी पारली हेले तमे बोले जानी पालेनी। ता छड़ा आजिकाली गाड़ी मोटर रे अनेक पिला कॉलेज आसुछंती। उपरी रोजगार जो बापा मांगा पाखरे बेसी तांका पिला तो गाड़ी चढ़ीबा स्वाभाविक।
0: ओ मो बापा को भी से लिस्ट रे रखिच?
1: अरे ना ना, तमो बापा तो बहुत उद्धारी। राज्य सारा जिते सब कोठा बाड़ी रास्ता घाट सरकारी स्तर चलती। तम बापा तो मुख्य कारपटदार, जहाँ पाखे मंत्री एमएलए भी मिलज भाया हाथ पता सबुठी परसेंटेज सबुठ परसेंटेज दवा को बाध्य। अब से दयालु मो एमए पढ़ला बेले 2000 टका दे पाखे मुझे कृतज्ञ।
0: एत कृतज्ञता स्वीकार नक गाड़ी बस ठीक बुलाबूली कर फेरी आसवा।
1: ना प्लीज, आज मोर अनेक पढ़ा अच्छी, मु रूम को जाऊँ।
0: ठीक अच्छे, रूम को चलो।
1: तमें
0: गाड़ी लॉक करी जाऊँ ची।
1: आउ किछि
0: काम अच्छे रूम रे कहबी।
1: ओहो अनुपमा, जेत मना कले भी तमें से बेड पर बसी पड़छ।
0: तम बेड टे बसिले मते बेसी भल लगे, खूब खूब खुशी लगे।
1: हेला बाबा हेला, जहाँ तम खुशी कर। हाँ आउ को काम बाकी रहला शीघ्र सार।
0: मो कथा रखिले शीघ्र सारी चली जीवी। कह मो कथा रखिब त
1: चेष्टा करिवि।
0: निछक भाबे हो मारिबा भली विश्वास मो ऊपर नहीं।
1: अभिमान करनी कह।
0: तम पढ़ा पढ़ी रो सुविधा पई किछि टंका रख।
1: ना
0: प्लीज,
1: एक्सक्यूज मी,
0: रख कहू छी।
1: ना
0: रखिबनी,
1: मोर दरकार नहीं बाबा।
0: मनीषर आग्रह को एमती अग्रह करिबा ठीक नुहे जग। थरी भाव
1: दरकार नथला बेले भाबिवार भी दरकार कोन?
0: मो प्रति एते निष्ठ रहबा को तुम बिबेक चाहछि, तुम मन कहछि।
1: अच्छा थरी एमती दुख करिबा अभिमान करिबा कांदिबा मते भल लागे ना अनुपमा।
0: जी पूछि परे ना लोक काहे कि दुख करे, काहे कि अभिमान करे, काहे कि कांदे, ताकु भलो लागिबो केमिति?
1: ओह माय गॉड,
0: तुमको भगवान सब बुद्धि देइछंती हेले हेले मानिस को बुझिबा बुद्धि तुमको निश्चय देइनांती ता नहले।
1: हां कोन कहि जाउछ कहि जा।
0: कहिबार मोर किछि नै कि मो भलो पाइबार मूल्य भी किछि नै। जे भलो पाइबा जाने ना
1: के कहिला

0: Hi, Jago.
1: Hi.
0: Congratulations.
1: Thank you. Go, Khusri.
0: IS 5, Khusri.
1: Really? Again, thank you. Dhanyavad.
0: Double dhanyavad.
1: सब परीक्षार फल तुम पाठ शुणे बोली ता छड़ा तुमको थे कही अनुपमा तुम बापा बोल को इतने जीवन थी जाए भूली पारि
0: तुम्हें ठीक मन पकईदेल से दिन मु पचारि मत
1: कही भूली पारि
0: मोर प्रश्न थी कथा ना कम
1: मुझे परीक्षार प्रमाण
0: एक मुझे निश्चय परीक्षा ने
1: मोर उत्तर थी समय तार प्रमाण दब
0: से परीक्षा नाक मु आज जदि प्रस्ताव दिए
1: कथा देते बड़े प्रमाण करने को बाध्य है
0: तेबे गाड़ी रे बस
1: गाड़ी रे
0: ओहो इते कॉन्शियस कहीं के बस ना
1: ठीक अच्छे
0: ना आज बैक सीट रे नो मो पाखे रे
1: माने हाँ

0: आश्चर्य हेगल कहीं
1: मत
0: तुम ठीक अनुभव करिछ तुम्हें आज मो मन प्राण हृदय अजग ही ना जगन्नाथ ही जाइ मत विश्वास कर मो मन जीवन आज प्रबल बेगर गति कर जगन्नाथ तुम समस्त विद्या बुद्धि खटे देख ए चलना ना कौन सी प्रहसन ना मुकाय मन पाखे तुम सा
1: अनुपमा चल निज निज घर को फेरी जा
0: मो कथार उत्तर देलानी तो तमें नवा को भल पा ना दबा को भल पा
1: बर्तमान अवस्था मुझे काट नवा को चाहे ना बर साध्य मत दबा को चाहे
0: तेबे दियो
1: कौन
0: मना कर बनी तो
1: हाँ आज पाई जहाँ चाहछ कह मन को मन मना कर
0: गोटाए प्लीज
1: ठीक अच्छे
0: जगन्नाथ तुम्हें बहुत दिन स्वप्न को सार्थक कर सारा जीवन एमती कटे को मन चाहिए जगन्नाथ केवल सान्निध्य पाइले मो जीवन परिपूर्ण हो जाता
1: अनुपमा तमें ब्राह्मण घर झी मु अच्छव दरिद्र घर पिला अछुआ रक्त मो देह प्रवाहित होम भितर अनेक अनेक पार्थक्य अनेक दूरत्व
0: पार्थक्य कोठी दूरत्व किते
1: असरंती पार्थक्य योजना योजना दूरत्व दुर्गम पथ मझीरे पथर बंध से बंध आखि पाउनी अनेक अनेक व्यवधान
0: मु से सब को मानिबा को राजी न जगन्नाथ मु तुमको विवाह करबा को चाहे
1: तम मो बह गले जातिवाद उठिजी गरीब बड़लोकर पचेरी भुशुड़ी पड़
0: किंतु महात्मा गांधी
1: खूब चेष्टा करते किंतु जातिवाद को उठे पारे न अनुपमा शेषे रहीगला हरिजन बापूजी लोकमुखर प्रिय हो गले सिना से गार आहरी गहरा होगा केवल इतक नुह अनुपमा आज राजनैतिक बेपारी मैंने से विभेद रेखा को आहरी अधिक तीव्र तीक्ष्ण प्रखर करदे अनुपमा हरिजन आदिवासी पछुआ वर्ग संख्यालघु एमती नुआ नुआ संघर्ष सूत्रपात कर सारे एते पर भी
0: जगन्नाथ
1: सामाजिक परिवर्तन सिना धन में मापिले हाँ कि मपा चली जाति कौन पर राजनीतिर पशापाली जाति को गोटिकर सजी चतुर शकुनी मान समय को चाह नुआ नुआ फंदी फिकर बाहर कर सुविधा हासिल कर चलने तार शिकार है हमें पंगपाल पर माड़ी चल चे आगक आगक बहुत आगक
0: किंतु तमर विचारधारा तो संस्कार धर्मी जगन्नाथ तमे तमे ता भीतर लेसी पेसी जाउ छ काहे कि
1: बाध्य हे छ अनुपमा मु आज सेई तयार पत्र कोटारे आईएस पाइछि आ ताकोई संबल करी ताकोई आधार करी जते बेर सारा जीवन बोही चलबी से घर भीतर भारीर प्रश्न उठु छ केउठ अनुपमा आई एम अनडन
0: जगन्नाथ
1: मुझे मो जुक्ति तुमको आलोक सन्धान दबानी किंतु मो शून्य
0: शून्य हस्तरे फेरी जीवा को कही चाहे ना जगन्नाथ इच्छा अनिच्छा को स्वीकार करे ना
1: अनुपमा
0: आज आज मो शून्य हस्तरे फेरी जाऊँ जगन्नाथ मोर यही अनुरोध टी मन रखी थ मु तुम जाति को देखी नी तुम जीविका को चाह नी तुम जन्म को बुझी नी बुझी तुम जीवन को तुम प्रतिभा को जो बहार प्रस्ताव दे जगर जगन्नाथ बोली कही थी हाँ तुम्हें आईएस ट्रेनिंग एक शहे थर भाव चिठीदेव

0: अनुपमा मोर शुभेच्छा नब तुम सब चिठी पाई पढ़ी उत्तर देवी कि न देवी द्वंद्व पड़ी किंतु ये चिठी अनेक दिन आरंभ करी आज ही शेष कर पण कर शेष चिठी दौर चिठी पाई पढ़वार धर्ज निश्चय हर बसवाणी तथा पढ़व
1: पढ़वी तो निश्चय किंतु किंतु चिठीर विषय वस्तुर लक्ष्य आ लक्षण मत पाद पछ को हटे दौ जगन्नाथ मुस्प्रिय हो जा तथापि तथापि पढ़ुची हाँ
0: तुम विवाह प्रस्ताव को अग्राह्य कर तुम मत पलायनपंथी कहपार कृतज्ञ स्वार्थपर सुविधावादी निष्ठुर आत्मगर्वीर षठाचारण भाव आक्षेपी दे पार मात्र एसबू अभिगुण से मुझ जमार अंशीदार नुह अनुपमा राणखाई कह उपाय
1: ना जगन्नाथ ना मु तुमको पलायनपंथी कह कि कृतज्ञ स्वार्थपर सुविधावादी कह कि निश्चय निष्ठुर कह तुम गोटे नारीर मन प्राण हृदय को ठीक चिन्ह पारे निष्ठुर आ क्या कहते आम राण पक कह उपायहीन उपायहीनतार अर्थ किसी बुझेना जा बुझे तुम बुझेबार ठीक रिभर्स संपूर्ण ओलटा तुम्हें तुम्हें विश्वास कर न कर मो जानबारे इच्छा थी उपाय मिले हाँ उपाय मिले ठीक अच्छे कौन लेखी जाऊ लेखि जाओ
0: किंतु अनुपमा तुम्हें उपाय द्वारा तो उन्मुक्त तुम्हें सर्वगुण से परिपूर्ण रूप गुण शिक्षा दीक्षा सभ्यता कौन स्थिर अभाव ना
1: तेज कौ अभाव मो प्रस्ताव प्रतिबंधक सृष्टि कला भाषा चातुरी काढ़ी प्रयोग कर मान कौन मो उपाय द्वारा तो उन्मुक्त करी तुमरी पाखे कहीं तुम्हें तो स्वीकार करहीन उपदेश मान कौन अनुपमार आशा आकांक्षा स्वप्न को बुझार सामर्थ्य तुम पाखे सामान्य भाव्य मध्य ना तुम कह
0: मोर कह तात्पर्य हूँ अनुपमा जेकोसी पद पदवी से आईएस हो कि जहा हो तुम बापा खिणा को समय लगे टंका सुना गाड़ी बिल्डिंग कौथर तुम अभाव अच्छी जो बैंक देख अजस्र धन तुम्हें चाहिए मात्र सबकिपर
1: चाहबार हिसाब तुम्हें कि बुझीना जगन्नाथ बुझी हुए तो तुम सब सरल हो जाता
0: मो क्षेत्र में सरलतार एकम्र उपाय मो बापा माँ चाहूवा यही अच्छव घर झीटे बाहरी मो जन्मर मो जातिर टेक रक्षा को बाध्य से ही मु शांति पाइबी
1: ठीक अच्छे जगन्नाथ तुम शांति बाधा देवा को चाहे ना भल पाइबार अमंगल सूचना न थाए थाए मंगल बार्ता सीमाहीन रास्त हनीज सत्य कदापि तुमको बाधा देवे नहीं
0: अनुपमा तुम उपमा ना तुम श्री थी संपदर मूर्तिमंत निखुण प्रतिमूर्ति तुमको मापियापाई मोर सामान्यतम क्षमता ना अबेलार दुस्वप्न परी मत मन दूरे दि मत क्षमा कर अनुपमा
1: क्षमा तुम पाई मो पाखे क्षमार क्षमता ना तुम्हें जगन्नाथ
0: अनुभव स्नेह सहानुभूति अनेक तमें मो फुकिया नुह फुक तमें मो केवल अनन्या नुह नमस्या कोलर नुह कह पवित्र।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: जहाँ वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनार सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्ष दृढ़ मूल दुआ। चेटिनार सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
1: लोकगीत कार्यक्रम रे सुनंतु पाला परिवेषण करिसेंती सौदामिनी साहू एवं साथी।

गुरु सख्य परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्वस्थिता। नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य नमो नमः। गणे नारायणे रुद्रे अम्बिके भास्करे तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्यं पंचदेव नमस्तुते।

हे मोर गुणी ज्ञानी पंडित समाज आज्ञा मर्यादा पुरुष सीतापति सुंदर प्रभु रामचंद्र पितृ सत्य रक्षा करी 14 वर्ष वनवास करी राक्षस रावण को वध करी विभीषण को लंका कटक राज्यभार दे माँ सीता ठाकुरानी को उद्धार करी फेरी आसी अयोध्या कटक को पुनर्बार गुरु वशिष्ठ निर्देश में प्रभु रामचंद्र राज्यभिषेक पर्व आरंभ हो आज्ञा किपरि होइछि वैदेश विलासरे ब अनुप्रासरे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज लेखिदेइथिले वसुधा सुधामयी विशुद्धा सुधापि सुधांशु नव छत्रे रम्य आज्ञा आज अयोध्या कटकर समस्त घरद्वार को धला रंगरे सुसज्जित कराइछि एवं प्रभु रामचंद्र शुद्ध अमृत पान करी वज्र सिंहासन जे हीरा खचित सिंहासन उपरे धला पाट वस्त्र पिंधि विराजमान करिछंती तांका मस्तकरे चंद्र सदृश छत्रटी टेका जायछि बर बर निशिता बर बर नाजुक्ता अछंती कोळरे बसाई बर बोलते सुवर्ण बर बोलते हळदी सुवर्ण बर्णा सीता सर्वांगरे हळदी बोली होई प्रभु रामचंद्रंकर बाम पार्श्वरे बसिछंती ब्राह्मण माने मंत्र पाठ करुछंती श्री रामचंद्र।

0: रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई पर बचन न जाई ए रघुकुल नीति अच्छी जे सत्य भ्रष्ट हेबे नाही जीवन जाऊ पछे किंतु निज सत्य रक्षा करिवे आज्ञा एही न्याय रे आज जेते बेले राजा दशरथ को पक्षीराज टायु कहि देइछंती किंतु राजा दशरथ पुत्र स्नेह रे बाया होई दान देबा पई नाही करि देले कहले हे मित्रवर आपण मो पुत्र को छाड़ी आउ जहां मागिबे मु निश्चय देबी
1: एकी आश्चर्य कथा कहू छ मैत्रे
0: किंतु मो पुत्र को दान दे पारिबी नाही आज्ञा पक्षीराज जटायु कहुछंती हे राजन तुमे तुमर सत्य भ्रष्ट करिछ क्रोधे जजरित जटायु राजा कार्य कलाप क्रोधा नळे जळी उठिले देले दारुण साप तुम्भ मृत्यु काले मुखरे जळ न देव राम मो सबरे जुई जाळीब राम सत्य वचन आज्ञा पक्षीराज टायु आज रागी जाय राजा दशरथ को कहते हे राजन तुम्हें तुम सत्य रक्षा करना मु तुमको अभिशाप दे तुम्हें जेपरी आज मत फेराई देछ जे पुत्र आशा से ही पुत्र तुम मुखर जल देव ना कि मुत मरी मो शबरे से ही पुत्र अग्नि संजोग कर आज्ञा गुरु वशिष्ठ कहते समस्ते शुण यही मु मंथरा को निर्देश दे जे रामचंद्र को बनवास देवाई किंतु राक्षस मान को निधन करिवार थिला एवं ऋषि मान जाग रक्षा कर अभिशाप कार्यकारिता रही से मु मंथरा को निर्देश देपरी आज्ञा मंथरा से दिन ठार निर्दोषी हो रहा हौ दिन जन शरण रक्षण महाबाहू दिन जन शरण रक्षण महाबाहू हरि हरि बोल।

0: ଆକାଶବାଣୀ କଟକ ସମୟ ଦିନ ଗୋଟେ ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ସମ୍ବାଦ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
3: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
1: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त

उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया। इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया, जिसमें भारत, फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप, नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए। स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें

0: करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है। माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है। प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा। उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थीं। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाएं और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलों को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गांव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह

0: में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहां पर पटना में साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि यह कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्ताव

0: प्रस्तावित मेगाडातू परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
1: Our position on Indus Water Treaty is well known.
2: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूत
0: रहा हो। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय में अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया गया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से प्रमाणित योग प्रशिक्षक श्रुति अग्रवाल ने सत्र का संचालन किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस और स्लोवाकिया की 5 दिन की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न। श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी कटक। हमारा परवर्ती कार्यक्रम आंचलिक संवाद शुणिपारे टिके परे।
4: बन्या हेउ बा महाबात्या सबु परिस्थिति रे
5: गारु सहर जाए सबु स्थान रे
4: आबाल वृद्ध बनिता समस्तंक पाई
5: जुआंग ओ सांतालंक ठारु बंडा एवं कोयांक जाए
4: केवल आकाशवाणी।

0: शंकर, अरे शंकर, कौन सोचना ना इमा शंकर, तू बसी बसी एटी ढुलो था मुतन हाथोड़ी पिटी पिटी न आंत
1: आ न बो बस जा टिके जेमते ठंडा पवन बहुत ना देह कोल मर जाउछे ने बिडी धरा
0: हां दलु दलु दलु खंडे ना आओ हबनी शंकर जहाँ किसी गोटा फैसला करने को पड़
1: कि रे कि फैसला करूँ
0: राति बिकाली डिस्टर्ट सिंगल पक्षे काम करवा
1: ग्यांगेर तो ना लिखेचु काम न कर चारा कौन
0: ताबले आम जीवन को बिकी ना कौन से इंजीनियर रॉबर्टसन साहब लोक ताकू डर भय न थी पारे हेले आमे
1: तू भी गोटा गदंग पी कौ कि काम न कले आमको मजूरी दब किए आ मजूरी न मिलने आम संसार चलो कमी
0: मु देखु तू गोटे महाछेरुआ किरा आमे समस्त जदि रॉबर्टसन पाखे आपत्ति करवा से आम कथा रखिबनि
1: ऊपर परा अरड़ अछि ए 15 दिन भितरे लाइन काम सरिबो सेति पई त राति दिन काम लागिछि आ रॉबर्टसन को कहले कोन ते हेबो
0: तू करिबो त करूथा बाबा मु चाहू छी एके त ठंडा राति चारियाडे किटी किटी अंधार टेसन आलोक को अनिशा करी हमरे पेट्रोल मक्स बत्ती को निधार के जहां काम करबा कथा जानू त ई जागाटा केमितिका
1: हो हेला तेबे आमे काम बंद करबा कहिके रॉबर्टसन आसिले ताकू सब बुझे कहवा ये जगह भल नुह ये राति अजाए काम करवा ठीक हेनी।

0: हेले साहब
1: व्हाट
0: चाहने आपन पुनी से सिंगल टॉपिक रे जिवे
1: यस व्हाई नॉट जेमिति आसीथिले ठीक सेमिति फेरि जिवे बुझिला ए सब खाली तम मनर भय भूत भूत किछि नाही
2: अरे आकाश रे ट्विंकलिंग स्टार्स
1: बाट परिष्कार जणा जाउछि आ ता छोडा आई एम ए रेलवे इंजीनियर रेल लाइन ऊपर चालिवार अभ्यास अछि डर कोन
0: तथापि साहब गां भीतर दे टेंशन को चली गेले भलो हंता
1: इते राती रे तमे तो कुनी दुकान ओपन करी बसिछ डिस्टेंस सिग्नल ता तमो दुकान पाखरु हार्डली 50 यार्ड्स दूर हबो
0: पेट पटणा कथा राती अधरे दुकान न खोल रे आउ टिकक पर व्यापारी माने आसी चा पई लाइन लगेबे
1: व्यापारी यू मीन बिजनेसमैन
0: ए आज्ञा आलू व्यापारी राती पाइले बुझने दूर गां को जिबे त सेइति पई राती 12टा पर चुली रे आंच पके को पडुची नइले आज्ञा मो जीवन कौन भय ना हेले कौन करिबे बेउसा नकले पिला कुटुंब चलिबे केमती मो कथा मानंतु साहब आपण ई गां गोहिरी दे टेसर को चली जांतु परिष्कार बाट पड़ची खाली टिके जहा दूर
1: नो नो इट्स ऑलरेडी लेट तमे व्यस्त होनी आई कैन सेफली क्रॉस द डिस्टेंस सिग्नल
0: साहब कौन कहले सेई सिंगल तो भारी भयानक सेई खुंटोटा आ गया
1: अच्छा अच्छा हो चारो केते पैसा आला
0: चारटा चाकू टंका 20 कंचा चोबे खाई
3: मिस्टर रॉबर्टसन मिस्टर रॉबर्टसन
1: के
3: वेट मिस्टर रॉबर्टसन ठिया हुआ
1: के तमे
3: भय करो ना I shall do no harm to you.
1: But who are you?
3: Mun tamaro aparichito. Please, Mr. Robertson, mate kape cha dei ja. Anek barsha ho cha khaini.
1: But I say, who are you?
3: Tame mate chinni paribani Robertson. Mun Green, mail driver Green.
1: Kintu tame kouthi? Mun tamaku dekhi paunu. Please come to my front. What's that? Emiti hosucho kaiki?
3: Tama kotha suni mate hosu marla Robertson.
1: But why?
3: Don't be afraid. Kahichi to mu tamaro kichi khyati karibini.
1: No, not at all. Mu ado bibroto nue. Khali janibaku chahe tame kahe ki mo samna ku asuna.
3: But I am so sorry Robertson. Mu tamo samna ku jai paribi nai.
1: Tebe mu cha debi kahaku? To whom and how?
3: सही तो ट्रेजेडी रॉबर्टसन मु तुम सामने को जाई परंती इच्छा कले तमे मते देखि भी परंत बट
1: को टेल मी व्हाई डू यू स्टॉप
3: आई एम हेडलेस
1: हां को कहलो हेडलेस
3: एस रॉबर्टसन मोरे विकलांग रूप देखि अनेक भय पाइचंती सेति पाई मोर साहस होनी
1: नो नो मिस्टर ग्रीन प्लीज कम टू माय फ्रंट मते देखा दियो तमरो कबंदता देखियो कु मोर भारी कौतूहल होची
3: आश्चर्य तमे केमिति मते देखबा कु इच्छा प्रकाश करूछ आज की 15 वर्ष हबो
1: आई नो ग्रीन यागुरु तमो विषय रे अनेक फैंटास्टिक तथ्य मो कानन को आछ बट यू सी आई डोंट बिलीव इट तमे अखलेश रे मो सामने को आसी पारो

0: Sir Robertson, here I am. Mumsai mail driver, Mr. Green.
1: Strange. Khali kutai kobondo. Dehare neri kamij. Au khaki pant.
0: Kaun bhavucha Robertson? Biswas hauni.
1: तबे मते बड़ आश्चर्य लागुचि ग्रीन मुंडहीन तमरो ए कबंद मनीष पर कथा कहुचि केमिति
0: लॉर्ड्स ग्रेस मिस्टर रॉबर्टसन वे तो मोरे सिरहीन पिंड रे गोटाए ऐश्वरिक शक्ति भरी जाइछि हेले दुनिया रो कोनोसी जीवंत मनीष ए कथा विश्वास करि पारु नाहंती सेई जाहा मोर दुख
1: बट मिस्टर ग्रीन तमे चा खाइबो केमिति
0: मु ठीक चा खाई परबी रॉबर्टसन तमे खाली फ्लास्क कवर रे ढाली चाटा तळे रखी दियो ठीक जियंता मुनीस परी मु चा पिउची देखिबो

0: Bagger and Buns, कौन है भाई?
1: खूब सुखड़े दिसचो?
2: ओ, मिस्टर ग्रीन.
1: कौन है जी? अरुषिक?
2: ना, किसी नहीं.
1: मुँह तमुँ खुजी खुजी ठीक असली. गोटे दिन ची, टाइम ही जाई ची.
2: हाँ, हाँ. तबे, मिस्टर ग्रीन, कौन कर भी कहिला?
1: कौन है भाई?
2: My mother is serious.
1: I see.
2: जाने ना कितने बड़े कौन होगा?
1: I think.
2: See with our punchy bun.
1: Oh, Buns, please don't cry. धज्जे थला. बेस्ट थले कौन होगा?
2: Duty को ऐसे लगे. सिमा तो माना कर थला. But.
1: Why do you worry? तुम घर उजा. मदन को attend करो.
2: किधर? My duty. मुझे तुमको relieve करवा कथा.
1: Well, मैं तुम्हें duty take up करूँ जी. Go home.
0: Buns. तमें ये पर्चन तो इंजन को जाए ना, it is already wet.
1: एक तो टेलर, ब्रदर, let him go home. ता मदर भारी सीरियस, ताकि उठे मुंह करेंगे.
0: तू?
1: Yes, please, तब जवाब दे.
0: किंतु मिसेस ग्रीन जैसा तो अपेक्षा करती थी. आज पर ताकर बात दे, सिद्धन से मत कौन थे लेकता?
1: ओ, तबे
2: था मिस्टर ग्रीन, तमे घर को जा, जहाँ मैं भाग्य रे थबो.
1: ना ना ना, ताकि मैं थबो. घरे तो मदर सीरियस, ये अवस्था तमे ड्यूटी करीबो. टेलर, प्लीज डू मी अ फेवर. क्वार्टर को जाई हेलेन को जानी देबू बंस मदर खूब सीरियस से तंग देखियो को जीव हम चलली बंस यू प्लीज गो होम
2: किंतु ताको बर्थडे
1: बर्थडे अपेक्षा मणिसर जीवन टा बड़ माय डियर फ्रेंड तू हेलेन को टिके बुझाई देबू
0: बट मिसेस ग्रीन मन दुख करिवे
1: टेलर हेलेन मो स्त्री मो अपेक्षा तू कोन तक बेसी जानू तू जाई ताको जानी देबू सी वोंट माइंड
0: ओके मुगल
1: बाय

0: Jenny. Jenny.
1: Oh, dear. Tamu PDS na?
0: Yes, Jenny.
1: Kintu tamu duty?
0: Mr. Green korchi.
1: Oh, my hearty thanks to him.
0: Tamu jana Jenny? Kete cost re mu escape kori aschi? Mate ritimot gote drama koriyok padla Green agre.
1: Drama?
0: Yes, darling. Rest shade re bosi dekhili. Bada besto hi Green mate khoji khoji aschi. Taku dekhiba kheni mu kandi pakheli. Kahili, my mother is serious. Please help me.
1: And tapare?
0: मुझे जाने ग्रीन इज अ गॉडली मैन कहा दुख से सही पारे ना संगे संगे कहला बंस तुम घर को जाओ मु तुम ड्यूटी टेक अप कर छी
1: ओ शो काइंड ऑफ हिम
0: जेनी मम्मी कौन कर छी
1: सोई चंती
0: तमर पुनी कौन हैला एमति ग्रेव हे गले जे
1: ना
0: प्लीज जेनी कौन ही छी कुह ना
1: केते दिन तुम एमति एक्टिंग करबो बंस
0: एक्टिंग व्हाट यू मीन
1: केबे मदर सीरियस तो केबे वाइफ सीरियस अच्छा तुम चाकरी छाड़ी दो ना
0: छाड़ी देबी
1: तमे तो जाने भला मैकेनिक वर्कशॉप रे काम करी परबो
0: इट्स नॉट सो इजी डार्लिंग हठात अन्न चाकरी पाइबा इते सहज नै अंडरस्टैंड
1: किंतु मु तमे मदर के सेवा करी परबिनी आई एम नॉट अकस्टमड
0: ओ बुझली किते तमे घर रा हाउसवाइफ मो मदर रो ओल्ड एज रे तमे तारे देखा सुना करबिनी तो की करबो
1: काहे कि मु कोन तमे घर रे आया है कि
0: जेने
1: वेडिंग मैटर तुम मते कोन कहितला भूली गेला
0: हो तमे से कथा ए पर्यंत फुली नता हेले केतु छेनी तमे त देखु छ थार अवस्था आ केतु दिन ओसे बंचिबो तारे सेवा कले शी विल ब्लेस यू जेनी
1: मोर से ब्लेसिंग्स वर्क करने तमे कण जानिला माय फादर इज एन इंजीनियर मो तकर ओनली डॉक्टर केते कंफर्ट्स केते लग्जरी भीतर में बडची अत चेटी आई एम लेस

0: सर्वेंट
1: जेनी प्लीज स्टॉप इट
0: ना मु तुमक साफ सफा कहि दउछि मो तुम मदन को अटेंड करि परबिनी तमे जने आया रख अरे मते हम घर नै छाड़ दिया
1: जेनी लिसन
0: ना मु किछि करबिनी
1: जेनी

0: आई एम सॉरी डार्लिंग, तुम बात रे मु रही पालेनी, किंतु कौन करबी? बिचारा बर्न्स रे मदर हठात सीरियस हे गेले, से बड़ बिकल हे मते कहला। मु सत कुछ डार्लिंग, आई कुडंट स्टैंड हिज एगोनी, बाध्य ही ता ड्यूटी मु टेक अप कले। टेलर निश्चय कहितबो तुमको। अच्छा तुम जाइथिलो बर्न्स रे मदर को देखिबो को? हेलेन कौन हला? आर यू एंग्री? कथा कहिबोनी हेलेन, प्लीज।
1: No, don't come to me. मुझे तो बर्खे नहीं।
0: Oh, Helen dear, कहले तो excuse me, कौन करी थांती? After all, we are colleagues. जाने अन्य जान कुछ हाथ जना कले।
1: मुझे तो बर्खे explanation चाहनी। I know, मैं भी क्या duty तो माखिर बड़ो। I know, you don't love me.
0: Helen, please, please for heaven's sake, सिंधी कोनी।
1: तुमको wait करी करी सारा दिन आकटी कला। আজি মোর পাঠটা বলে তুমি কোন জানি নথিল এতে বড় কোয়ার্টার রে মু একা
0: কাই কি তেল কোন আসিনি তাকো এতে কইবা পরিবি
1: ওই স্টেলা সে মোর কি মো পাঠে রে সে কাই কি
0: ওফ তোমার বোর্ডম ভাঙ্গিও কো গটে কোম্পানি তো দরকার সেই কথা কই মু তাক পাঠাইতিলি সে কোন এঠিক আসিনি
1: আসিতিলে বাট
0: কোন হলা
1: মু তাকো চালি যাবা কো কইলি
0: হেলেন
1: তুমি নথিলা বলে
0: হেলেন
1: কাই কি মু কিছু ভুল করিছে সে তোমার বন্ধ হই পারন্তি किंतु बंधु पत्नी तो तांकर नुहंती
0: हेलेन होल्ड योर टंग कहा को कोन कह जाउछ तमे जानी छ से मोर केते घनिष्ठ केते विश्वस्त
1: हां जानी जानी सेति पे तांकु मोर बॉडीगार्ड सजी तमे दिन दिन रात रात बाहर फुर्ती करी बुली चलु
0: स्टॉप इट आई से कोन कहिलो मु बाहर फुर्ती करी बुलु छी
1: तानु त कोन तमे कोन एका रेलवे से काम करछ तमे कोन एका सिंसियर वर्कर तमे ड्यूटी नकले ट्रेन चलाचल कोन बंद हे जेबो जे ते रिक्वेस्ट करले बे केबे कोन से दिन कोन से फंक्शन को मते नहीं जाई ना कोन से दिन क्लब पार्टी को मते संग रे नहीं ना कोन से दिन मो मन कथा बुझवा को चेष्टा करी ना सारा दिन सारा राती शून्य घरटा भीतर मो पड़ी रहू छी केबे कोन से दिन इच्छा करी मते तुम्हारो सानिध्य दे छ मो भी कुठे मनस मोर भी कुछ आशा छी डीजे हारे छी एक कथा तुम्हें कोन के चिंता करी छ तुम्हें कोन जाओ सारा जीवन एमती निसंगता भीतर मु कष्ट पाए जंत्रणा पाए ड्यूटी रो बहाना करी तमे मुठु दूरे रहो छ काहे कि स्त्री हिसाब रे तमे ठु काणी चे स्नेह दर पाइबर अधिकार कोन मोर नाही को अग्रे टेल मी टेल मी
0: प्लीज प्लीज माय डियर कांदने मत भूले छी एक्सक्यूज मी प्लीज एक्सक्यूज आओ यार पुनरावृत्ति होनी
2: Green, why are you silent? को कौन है लता परे?
3: सही घटना परे, दिने मु ड्यूटी के बाहर ची, हठात टेलर को आसीबार देखिली। सही दिन बड़ निर्दय भाव रे ताकु फेरे दली मो घरु। सावधान भी करी दली, मो एब्सेंस रे से जमिति मो घर को आउ न आसे। अपमान पाई टेलर फेरी गला। गला बेले कही गला, मुं जदि ता चरित्र उपरे संदेह करूची से आउ मो घर को केबे हेले आसीबनी हेलेन मोर से दिनर व्यवहार देखी आश्चर्य हेले भी टेलर को सपोर्ट करी कौनसी कथा कहि नथिला आउ ता परे रॉबर्टसन मो विपर्जयर अंतिम मुहूर्त आसी गला रॉबर्टसन प्लीज प्लीज गिव मी सम मोर टी शेष कथा कहिबाकु मो भॉइस टकिंती चोक ठे जाऊची प्लीज रॉबर्टसन मेक हेस्ट

Now I feel relaxed. हाँ, कौन कहूली से दिन सका पूर्वपरी तीन दिन नाइट ड्यूटी सारी मु फेरु थाए घर को आगरु तो कही

0: really sad, Mr. Green. तापर तमे कौन कलो?
1: कबाट खोली देखिला बेळकु हेलेन द निबिड आश्रय सो भितरे बंदी हे रहिथिला टेलर। टेलर मोर सहकर्मी बंधु जाकु मु एते विश्वास करथिली जानी पारि नथिली मो अज्ञातरे केबे गढ़ी उठिथिला तांकर से आत्मीयता। रॉबर्टसन तमे होय त कहिबो पिस्तल मारी से दिजन को शेष करि दबा मोर उचित थला किंतु मु ता पारिनि उचित अनुचित विचार करिवार अवसर मोर नथिला। घृणा आउ अपमान रे सेई बारंदा उपर मु फेरी आसिली स्टेशन र रेस सेट को मन भितरे दुर्भावनार अनेक अड़ुआ तड़ुआ सूता रखियो। बेंच उपर बसि रही चिंता करूथिली दोष कार मोर हेलेन र ना टेलर किंतु से त्रिभुजर कौन शेष अछि रॉबर्टसन? से कहानी कौन उपसंहार अछि? केतेबेले संध्या हे जाइछि मते जाना नाही। हठात किए कांदिबार लक्ष्य कली।
0: प्लीज चेनी डोंट क्राई लाइक ए चाइल्ड। विश्वास कर आज मु हायर अथॉरिटी को मीट करी कहिबी से माने मते लोको वर्कशॉप को ट्रांसफर करथु बोली।

0: 하루 전 너,
1: 응?
0: 하루 전
1: चौकी धर स्त्री का नुचि अनुशोचना आत्मपीड़न बंधन
0: शीतात्मा
1: चौकीदार स्त्री मरीनी लेखक महाशय से जीविता
0: किंतु
1: आपण को डरवाई मजार सेमती कही आप सत बोली धरी नहीं देखुची तेबे हाँ एक अवश्य सत जे ई जीर्ण प्रसाद रे अनेक अशरीरी अस्तित्व रही ना मुझ कौनी राजवंशर पूर्व पुरुष मान अतृप्त आत्मा सब घूरी बुलंती
0: हौ बुलू था से सब भौतिक कहानी अपेक्षा आपण हीरार कहानी अनेक भल
1: अच्छा कौटी छाड़ी
0: एडवर्ड गिबन झुनान गां हीराकुद
1: 1750 मसीह रे संबलपुर राजत्व करथले राजा नारायण सिंह ईस्ट इंडिया कंपनी सही समय रे संबलपुर दखल करने ले
0: तापर
1: ईस्ट इंडिया कंपनी अधीन रे काम करथवा दुई जन इंग्रज प्रथमे आस्थले एठाकु हीरा संग्रह करिवकु
0: हीरा संग्रह करियोकु के से माने
1: मिस्टर मटके आ लेफ्टिनेंट किटो मिस्टर मटके आस्थले 1776 मसीहारे और लेफ्टिनेंट किटो 1838 मसीहारे
0: किंतु से समय तो संबलपुर बड़ दुर्गम थला ना बहितार बाबू
1: तथापि भी सेते बड़ घन जंगल दुर्गम पहाड़ आउ स्थानीय बासिंदा प्रबल प्रतिरोध सत्वे से माने एठो अनेक हीरा नहीं जाइथिले
0: तो ये कथा होची हीरा ठीक को जगह मिलुथला
1: हीरा मिलुथला हेबे नदी आउ महानदीर संगम स्थल रे
0: ओहो
1: आपण जानती मराठा शासन समय रे सबुठ बड़ हीरा ए संबलपुर रु ही मिली थला
0: अच्छा भैदर बाबू मु किंतु सुनी छी महानदी रो दुई कुळ रु सोना मिलु थला बोली
1: ठीक सुनी छथि आपण मेजर अंसलिंग को ना जानी थिबे
0: जानी छी
1: हीराकुद बाली रु लोक माने सोना संग्रह करथिले बोली से तांको रिपोर्ट रे लिखि जाई छथिं
0: बाबा मु देखु छी खाली सोना विषय रे नहे हीरा संपर्क रे आपण को विराट कौतूहल अनेक खोज खबर रखते आपण से विषय
1: अवश्य सत अरे ये देखुं ये आलोचना भितर असल कथा टी पूरा पूरी पास
0: असल कथा
1: ए नाच गीत कथा जहा देखु शेष मत निजे जीवाक पड़ो
0: छाड़ तो ना से सब नाच गीत अपेक्षा आपणकर हीरार कहानी जथेष भल लगुच मत
1: ना ना लेखक महाशय मुझे शुणा प्रस्तुत नुहे कर्पूर उड़ी जा हेले कना तो पड़ी रही
0: माने
1: आपण मोर अतिथि मुझे जाए डाक आणवि नाच गीतर आसरटा ना ए रातिर फूर्तिता जी एक बारे नष्ट तेरे कथा हूँ मोर अनुपस्थित आपण एकाटिया निश्चिंत बसी रही पारे तो
0: कौन कह चाहते
1: माने पुरुष मान जी साहस शक्ति आर्य थार आशा करा जाए आपण से अभाव हुए तो ना ना कौन कहते
0: मु तो पिला नुहे अर्जुन बाबू आपड़ जदि निहाती जीवा को चाहते मोर किसी आपत्ति ना
1: खराब भावले कि कथा कौन कि नर्तकी मान हुए तो बाटर कौटी अटकी जाते पारती तेरे चिंता करूँ नहीं मुझ शीघ्र फेरी आसवि
0: हो
1: ओके

0: ए बाबू एंड चाहिचु कण साफ नबू नबू जदी पैसा पका बाबू सांत नबू
1: ए मंगली कौन हो जी ये देखी पारुनु तोर से सापो देखी बाबू केमती डर जाइछंती।

0: मंदिरर से अश्वारूढ़ रामणीर मूर्ति तुमर मन पड़े सुमित्रा
1: सतरे की सुंदर भास्कर्य
0: की बलिष्ठ दृढ़ भंगी ठीक तुम परी जेतबेले मु तुम कथा कल्पना करे से नारी मूर्ति मो आखे करे नाची उठे
1: तुम्हें जान अरुणांशु पांडव भाई माने द्रौपदी सहित बैतरणी स्नान कर कड़े चाहिए पापमुक्त होगा पुरी रे समुद्र स्नान कर पुण्य संचय कर अज्ञातवास भमें जमी समाज लुचि छपि बुलू आमर तथाकथित नीति आदर्श पे जो संग्राम कर चलीछु
2: हठात अन्य मनस्क हो पड़ल जे
1: ना ना तुम्हारे कथा मु मन रे भावांतर सृष्टि कर देला
0: स्वप्न कल्पना ए सब गोटे गोटे मरीच काम पई स्नेह ममता प्रेम ए सब रो बहुत दूर रे आमे सुमित्रा थौली रे निर्जन संध्या ही केवल मोर एकमात्र आश्वासना दया बाली रे संध्या नय आसुथुबो এই বনভূমি কোথলির কাকড়ে ফরি উঠিব কাকর পিছা কাছে ফুল ফুটিব
1: তুমি যে রীতিমত কবি পাল্টি গল
0: কলেজ জীবনরে অনেক কবিতা লেখুলি সুমিত্রা সামনার সে পুদাটা হলিউড লাভ লাগিলা কেই পুতে সেটি লুচি বসলা বলে মনে হচ্ছে
1: কই না তো अंधारे बेसी समय गोटाए जिनस को चाहि रहले सेमिति लागे
0: तथापि मोर गाय के धारणा ए केते दिन हला मते जेंति के फॉलो करछि पाखरे वरन रिवॉल्वर टर प्रस्तुत थाउ
1: सेटा तम मनर भ्रम अरुणांशु छी दियो से रिवॉल्वर टा मते दियो
0: एटा लोडेड सुमित्रा
1: मु जानि छी एते दिन पर आमे दिजने निर्जन संध्या को उपभोग करिवार सुजुक पाइ छी ता भितरि मारणास्त्र टा ना अरुणांशु दिया तक मु दूर को फिंगी देबी बस ए आउटी के पाका को लागी आसना
2: अरुणांशु विश्वासघातकता करी छी सुमित्रा तार गतिविधि को लक्ष्य रख
1: अच्छा अरुणांशु
0: कोन पचारी पर
1: ए केते दिन हला मु लक्ष्य करू छी तमे काहा को किछि न कहि गुआडे चली जाउ छै एका एका
0: भय करू छ
1: तुमको
0: बाबूतबो मुझे आम दल रहस्य पदार पकती बोली से कथा जानवा को सरदार तम उपर भार दी ना
2: दरकार अरुणांशु को हत्या करने को पड़ सुमित्रा तार बंचार अधिकार
0: कांदुच अभिमान कल कौन खोजुचे से वैनिटी बैग रे
1: ना किछि नहि रुमालटा
2: अरुणांशु बंचवा आम दल पक्ष विपद सुमित्रा ताको शेष कर देवा को पड़
1: कौन कली
3: दल नीति आदर्श को नहीं दल पत्र निर्देश मानी तू कम कर चिंता कौन

0: जानी थी ले कहमी
1: ना तू जानी छु
0: कण पछे
1: अच्छा सेसरे तू सोकुनी को बिछो दे मारि देलु ना
0: ई कथा पद्मस भाभी थिला जे पहाड़ तो पेल घे थेले मुई मरी जी हेले मी कण मरले
1: पहाड़ ऊपर एते तळु को तू खसी पड़ी भी बंची छु
0: मंगली एते जल्दी नहीं मरे रे भाईता राजा हीरार खोज खबर नहीं निकरी कण मी मरी जिमी
1: सेथि पई तू सकुनी कुमार देलो
0: मंगली संगे चलबाजी करी से कण जीवन भर रही पाथे ता पहाड़ तलु पाछी पछे चूड़े नाक्सा थई चड़ी बुटियारु आफुर निसा रे सिना से नाक चोट संभालु थिला हेले आफुर निसा फाटला उतरे
1: तू ता कुमारी दे की लाभ पाइलो मंगली हीरार खबर केवल बिचारा सकुनी जानथिला
0: मत भूलो छी भाई तारज हीरार खबर तो सकनी खाली तत्ते कही छी सेति लागि तो मुई तोर पाके आसी छे
1: तू होश रे थई कथा वार्ता करछु त
0: मत निसा मते नै लागे रे भाई तार राजा काय लागि और खेलु छु कह त तू केना भाबु छु सकनी के मुई मारी छी
1: तो छोड़ा ताकू के बा मारिबो कहार कोन बा लाभ हो छी
0: भाई तार राजा तू केना भाबु छु मंगली छुआटे सकनी के मौत खुई तू मातल नहीं करी तोरा के हीरार खोज खबर से गुटी गुटी करी कही थी सोर पक्का
1: मंगले
0: आर तारुत्रु सकनीर मौत भी पीसते ताकि तू मारी देलू आर मोर घर नहीं तार लाश के पकी देलू भाभी छु तू एकला चला नहीं
1: खबरदार मंगले तू बेसी बड़ी बड़ी कथा कहू तू जानी छु इच्छा कले जंगल भीतर तोते मारी पकी दी तार खबर के ही पाई
0: मार पर लगी तो आर्थर भी चेष्टा करी थी हेले पारलु मंगली के मार पर लगी कलचा दरकार बहितर राजा
1: तू भूले जाना मंगली जे आज पर्यंत अर्जुन बहिदार गति पथ को जे रोध करबा पई चेष्टा करी छे तार शास्ति केवल मृत्यु
0: मई केन तोर बाट छे कुछे हीरार खोज खबर दे दिल तो मैं मोर बाट बाट बोली छु
1: मंगले तो निज को भारी चालाक बोली भावुचु ना तू कौन भावुचु तू हीरार खबर नहीं ये ठु चाली जीवु नाए नाए मंगले से हीरा पाए सकुनी मरी जी आओ तू भी मरी बु
0: गुर के ना मौते पिस्तल देखी कर डरो छु
1: से हीरा पाई मोते दुनिया टा को ध्वंस कर देबा को जदी पड़े ता भी मु करबी से हीरा के बल अर्जुन बहिदार भोग करबो आउ तो देहर ई कळ मांस को उपभोग करिवे ए जंगल र कोथिया पिलुआ
0: ओई गुटे बीस धर साप रे बहिदार तोर और बंचवार अधिकार नाई ना ने ए नाक सब के मुई तोर लगी पाड़ी थी से सापर बिसे तोर देहटा चली चली जीवा अरे जंगल थी गधिया बिलुआ तोर मांस के खाएबे
2: भूतिक स्वप्न भड़ी जहाँ सब घटिगला मो आख्या करे सेथरे मुनीर पाक नाटकीय दृश्य परी देवगढ़ से भौतिक रातिर कहानी इठे निर्जन जंगल रे अर्जुन बहिधर को भी सक्त सापर गरल रे तिल तिल करी मरीबा को छाड़ी दे मंगली हिंस्र पाखुनी भली चली जाउछि दूर को मो आख्या करे अर्जुन बहिधर भी सरचल रे मुठा मुठा सुखिला पत्र धरी अर्थमृत साप भली फिड़ी मुड़ी होउछि आउ मु स्थान भली ताकु देखी

0: प्राणायाम रो कमाल नाही
1: हां बा जो दिन टिके व्यस्त थाए से दिन किछि न करि परले भी मु सूर्य नमस्कार टा प्रतिदिन करे आ अनुलोम विलोम टा भी निश्चय करे
0: तमरे जो योग आ प्राणायाम कथा रु मोर मन पडला
1: को कथा प्रतीक्षा
0: स्कूल बेला रो कथा स्कूल बेला रो अमर से शनिवार कथा टिके मन पकेलो जे दिन हमकु सकाळ उठि स्कूल जिबा को हुए आ स्कूल रे प्रार्थना सरीबा परे हमकु नुवा नुवा योग आ व्यायाम सिखा जाय
1: हां प्रतीक्षा से दिन स्कूल ले बेसी पाठ पढा हुए नी सकाळ समय टा केवल ई योग व्यायाम रे ही कटि जाय आ भारी मजा भी हुए सकाळ सना उठिबा को टिके कष्ट हुए किंतु सकाळ उठि नित्यकर्म सारी दे स्कूल पढेले भारी बढ़िया लगे मन रे शांति आसे आ पाठ पढिबा को भी भल लगे
0: ठीक कही जो विश्वजीता मु भी एथरो थाले निश्चय प्रतिदिन सकाळ उठि योग व्यायाम करबे।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है तुम्हें वही शरीर मिलेगा, ये मेरा शाप है। तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिवजी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

0: ग्राम लेखाए फ्लोनिकामिड 50 WG 60 ग्राम ये सबको आम दुई लिटर पानी मिसेकरी आम सिंचन कले मटिया गुंडी पोक रक्षा पाईपर सेमती जदि गंधी पोक आपण लगुच गंधी पोक आम फेनभालरेट बोली गोटे इनसेक्टिसाइड अच्छी फेनभालरेट ताकु आम पाउश सहित मिसेकरी गच्छ उपरे डस्टिंग करदे आम सिंचन करदे ताहले आम सुफल पाइबा नचेत थायमेथोक्साम 25% WG 40 ग्राम किंबा इमिडा क्लोपिड 17.8% SL 50 मिलीलीटर 200 लीटर पानी रे एकर पिछा मिसेकी सिंचन कले आमे मध्य सुफल पाई परिबा गंधी पोक दाउरु।
1: आमे प्रथमे तो आम चाषी भाई भोनी मानको कहिबा जे जैविक कीटनाशक से प्रयोग करिबे जदि सेथिरे दमन न हेले माटिया गुंडी पोक बा गंधी पोक तापरे से माने रासायनिक कीटनाशक विशेषज्ञ परामर्श अनुजाई प्रयोग करिबे।
0: निश्चित भाव जैविक कीटनाशक प्रयोग करने दरकार जदि जैविक उपाय अणरसायनिक उपाय जदि पोक दमन न होती शेष पदक्षेप आकार पोकर आर्थिक देहली सीमा बा इकोनोमिक थ्रेसोल्ड लेवल जदि बढ़ीगला तापरे विशेषज्ञ परामर्श क्रमे आम कीटनाशक प्रयोग करने दरकार।
1: अच्छा आप आलोचना भितर कहते शोषक कीट मान पुनरुत्थान पचरे कारण कौन
0: पुनरुत्थान हूँ गोटे शेष प्रक्रिया प्रथम प्रक्रिया हूँ पोक मरीजा द्वितीय प्रक्रिया हूँ पोक मान सहणी शक्ति वृद्धि पाइबा तृतीय प्रक्रिया बा शेष प्रक्रिया हूँ पोक मान पुनरुत्थान हवा विष टे दे पोक मरीजा गोटे साधारण प्रक्रिया विष टे दे पोक मान सही ये हूँ सहणी शक्ति कथा एवं तृतीय कथा जो विष टे दे पोक मान मरीजा सह बदल पोक मान क्षमता वृद्धि पाइबा ये हूँ पुनरुत्थान कथा तेणु पुनरुत्थान कहीं जदि आम गोटे कीटनाशक बारंबार गोटे क्षेत्र में प्रयोग कर पुनरुत्थान हम जदि रद्द होता कीटनाशक बारंबार प्रयोग करुत्थान हम जदि सहणी शक्ति विहन किसम जदि व्यवहार कर तेज पुनरुत्थान हम एवं केवल आम रसायन रसायन होकरी सबुबले रासायनिक सार और औषधर प्रयोग कले ସେଥିରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଏଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ନିରାକରଣ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଏଡେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କୀଟନାଶକ ପ୍ରୟୋଗର ବିଧି ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମେ କେତେବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଖରାବେଳେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ହେବନି ସକାଳେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ବେଶୀ ଭଲ ଉପରବେଳା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର କୋଉଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଯଦି ମାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡି ପୋକ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗଛର ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ତାର ବୁଦାମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଗନ୍ଧି ପୋକ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବୁଦାମୂଳରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ଉପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ତେଣୁ ଗଛର କେଉଁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ କେଉଁ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମକୁ ଜାଣି ରଖିବାକୁ ପଡିବ
1: ସେଇ ଜିନିଷଟା ଚାଷୀ ଭାଇ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଜାଣିକି ଯଦି ସିଏ ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯୋଉ କୀଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପୋକ ଲାଗିବ ନାହିଁ
0: ନିଶ୍ଚୟ
1: ଯାହା ହଉ ଭୁବନାନନ୍ଦ ଅଧିକାରୀ ସାର୍ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଆଜି ଯାହା ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଥିଲା ଖରିଫ ଧାନ ଫସଲରେ ଶୋଷକ କୀଟ ପରିଚାଳନା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମର ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇକିରି କହିଲେ ଯଦି ସେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଏହାକୁ କାମରେ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ପଲ୍ଲୀମଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ନମସ୍କାର
0: ନମସ୍କାର
1: ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର।

0: ଶୁଣିଲେ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଡ଼କର କେତୋଟି ଗୀତ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
0: अपन मने कार्यक्रम सुनचुंदी आकाशवाणी कटक केंद्ररु।
2: Good evening listeners, this is Akashvani Katak. In this evening, we have a talk for you entitled Mental Health and Yoga. Our talker is Dr. Pratibha Sri.
3: Mental health is an invaluable thing in life, being an essential aspect of human life. It influences the thought, word and deeds of an individual. A mentally healthy person has a good brain power with concentration, memory power, positive awareness, confidence, creativity and willpower. To meet the challenges in life, a good mental

0: जिम्मेदार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। और चीन में मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अश्मिता चालिहा महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में अवसर उन्हीं देशों के होंगे जो कुशल प्रतिभाओं का पोषण करेंगे, नवाचार को बढ़ावा देंगे और गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके। और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत के युवाओं की आकांक्षाएं, कौशल और क्षमता ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करती हैं।
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े। जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकर टॉल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। कोयला गैसीकरण ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने, आयातित महत्वपूर्ण कच्चे माल पर निर्भरता कम करने और घरेलू कोयला संसाधनों में मूल्यवर्धन को बढ़ावा देने की भारत की रणनीति

0: का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने ये बात कही।
1: 2014 में हमारा डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन मात्र 46,000 करोड़ था, लेकिन आज भारत फाइनेंशियल ईयर यानी 2025-26 का डाटा देखें तो वह अब बढ़कर रिकॉर्ड 1,78,000 करोड़ रूपये से अधिक का हो चुका है। इसके अलावा 2014 के समय भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था वह अप्रॉक्सिमेटली 1,000 करोड़ था। इस समय हम अप्रॉक्सिमेटली 40,000 करोड़ रुपए का हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह केवल आंकड़ों की वृद्धि नहीं है बल्कि आप सबके सामर्थ्य की वृद्धि है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
2: As our foreign policy,
3: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में स्थापित करती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पासपोर्ट को सम्मान और विश्वास के साथ देखा जाता है। हमारी जिम्मेदारी ये सुनिश्चित करना है कि इस दस्तावेज को प्राप्त करने की प्रक्रिया एक अधिकार का मामला बने, न कि एक संघर्ष का।
2: Remains a matter of right, not as a struggle.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास, विकास और जन कल्याण की प्रसारित कर रहा है। आज बात पूर्वोत्तर के बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
5: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो होलंगी एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
4: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
6: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का आसाम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
4: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय

0: बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में ये फैसला सुनाया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है तथा उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
2: This is the country.
3: यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
0: लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए, हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 पौष अधिनियम के अंतर्गत व्यापक उपायों के तत्काल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों द्वारा त्वरित कार्रवाई के लिए 18 उपायों की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में अगले 3 से 4 दिनों तक तेज वर्षा की संभावना है। विभाग ने मछुआरों को 24 जून तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में नहीं जाने की सलाह दी है। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन की महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया की किम मिन सन को हराया। चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के दूसरे चरण में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राची और मीनाक्षी ने अंतिम 4 में स्थान पक्का किया। पुरुष वर्ग में दीपक और निखिल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में भारतीय युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने चिन्हित फुटपाथ पर चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार बताया। इसके कार्यान्वयन के लिए एक नियामक निकाय गठित करने को कहा। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi disburses incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, says Indian youth will be at forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in years to come. Country's first commercial plant to manufacture ammonium nitrate from coal to be set up in Jharsuguda district of Odisha with an outlay of 25,000 crore rupees. Supreme Court rules right to walk on demarcated footpath is a fundamental right. Calls for setting up a regulatory body to

0: कार्यक्रम करंट अफेयर्स रिलेवर प्रेजर कुलू आकाशवाणी दिल्ली रु आपण माने कार्यक्रम सुनुछंती आकाशवाणी कटक केन्द्र रु केन्द्र सरकारंकर 12 वर्ष पूर्ति अवसर रे प्रचार करूछु विशेष कार्यक्रम रो रेकॉर्डिंग
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं पत्रकार सौरभ शुक्ला।
2: आकाशवाणी के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राष्ट्र प्रथम के मुद्दे पर। तो प्रोफेसर अंशु जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे कि जो एक 12 साल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा रही है और इसमें राष्ट्र प्रथम की अवधारणा और खासतौर पर हम जो पॉलिसी मेकिंग या नीति निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे आप किस तरह से देखते हैं कि वैश्विक परिवेश में, परिदृश्य में किस तरह से इसे एक नई दिशा दी गई है।
3: विगत 12 वर्षों में हमने भारत की यदि विदेश नीति और आंतरिक नीति की दृष्टि से देखें तो वैश्विक राजनीति में एक अलग पहचान बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विगत 12 वर्षों में राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ साथ हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा दर्शन है, जो सदियों पुराना है, उसको भी वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है और एक रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए, उसका इस्तेमाल करते हुए विश्व बंधुत्व की भावना के साथ हमने न सिर्फ

0: राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जब नीति निर्माण की हम दृष्टि से देखते हैं तो हमने भारत की यदि हम ब्रांड इमेज को देखें तो वो एक विगत 12 वर्षों में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर ये इमेज वैश्विक स्तर पर बनी है, जिसमें भारत को ग्लोबल साउथ का प्रणेता दूसरे देश मानने लगे हैं। और इसके पीछे कारण है, उदाहरण स्वरूप जब 2023 में हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी थी, जिसे कि पश्चिम के शक्तिवान देशों का एक मंच माना जाता था, उसका एक डेमोक्रेटाइजेशन करते हुए हमने अफ्रीकन यूनियन को एक परमानेंट मेंबर के रूप में G20 से जोड़ा। तो इस प्रकार से ग्लोबल साउथ की नेतृत्व की भूमिका में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारी पॉलिसी मेकिंग की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा जो पश्चिम के तमाम शक्तिवान देश हैं और ग्लोबल साउथ के विकासशील और अविकसित देश हैं, उनके बीच संतुलन बनाए रखने का एक पुल का काम भारत ने किया है, लेकिन इसके साथ साथ अपने राष्ट्रीय हितों को भी सर्वोपरि रखा है। तो जब बात आई कोविड की, कोविड के काले समय के दौरान हमने न सिर्फ अपने लिए 140 करोड़ हमारी आबादी के लिए हमने टीके बनाए, होम ग्रोन वैक्सीन बनाए, हमने दुनिया भर के देशों को, लगभग 150 देशों को हमने जीवन रक्षक दवाएं और टीके भेजे, और वैश्विक स्वास्थ्य की जो कूटनीति है उसमें एक नया हमने अध्याय शुरू किया। एक रणनीतिक संतुलन हमारी नीति के माध्यम से हमने बनाए रखा। तो हमने नॉन अलाइंड की बजाय ऑल अलाइंड की नीति अपनाई, जिसमें एक ही समय में एक तरफ हम रूस के एक नेचुरल अलाय वर्षों से हैं, उस यात्रा को हम जारी रख पाए, और दूसरी ओर अमेरिका जैसे देश के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया सफल अध्याय शुरू किया। हम इसराइल के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन हमारी विदेश नीति में पैलेस्टीन को भी मान्यता है। तो इस प्रकार से उधर यूक्रेन के साथ भी संवाद जारी रखा, क्वाड के माध्यम से अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी की, तो ब्रिक्स की भी हमारे पास महत्वपूर्ण मेंबरशिप है। वैश्विक सम्मान में वृद्धि हुई इस नीति की वजह से, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में 30 से अधिक देशों के द्वारा सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया है, और इसी से समझ में आता है कि कूटनीतिक दृष्टि से, नीतिगत दृष्टि से भारत किस तरह से एक सफल देश के रूप में आगे बढ़ रहा है।
1: बिल्कुल श्री, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब हम इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं, राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं, तो विदेश नीति के मोर्चे पर भारत के पारंपरिक और नए साझेदारों के साथ संबंधों को किस तरह से प्रभावित किया गया, क्या लगता है आपको, कैसा बदलाव रहा है, ये अच्छा बदलाव रहा है या कुछ चुनौतियां भी रही हैं?
0: ये एक बड़ा और सफल बदलाव मैं मानती हूं। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ था, तब शीत युद्ध चल रहा था जिसमें दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। तब की स्थितियों को देखते हुए भारत ने नॉन अलाइन रहने का निर्णय लिया, और तब की स्थितियों के हिसाब से वो महत्वपूर्ण था, जिसमें हम न यूएसएसआर के ब्लॉक के साथ, न अमेरिका के ब्लॉक के साथ अटैच हुए, बल्कि जो विकासशील देश थे एशिया के, लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, उनके साथ हमने एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट शुरू किया। लेकिन पिछले 12 वर्षों में जिस प्रकार से भू राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं, इसमें यह आवश्यक हो जाता है कि अलग अलग विषयों को लेकर जहां जिसके साथ हमारी एक साझा हमारे इंटरेस्ट हैं या हित हैं, वहां पर उन सकारात्मक हितों को ध्यान में रखते हुए हम हाथ मिलाएं, हैंडशेक करें। तो भारत विगत 12 वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन ये रहा कि नॉन अलाइंड से ऑल अलाइंड देश बना, और यही कारण है कि एक और रशिया के साथ हमारी एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो है ही, हम नेचुरल अलाय हैं रशिया के, दूसरी और अमेरिका के साथ भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया अध्याय शुरू किया, जिसमें कि काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स को लेकर हमने विशेष तौर पर काम शुरू किया, और वहीं एक इशू बेस्ड इंगेजमेंट भी हमने कूटनीति में जोड़ा। और वो क्या है, तो अलग अलग जो मुद्दे हैं, जैसे कि ऊर्जा सुरक्षा का क्षेत्र हम देख लें, स्वास्थ्य का क्षेत्र देख लें, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या तकनीक की दुनिया को देख लें, कृषि का क्षेत्र देख लें, शिक्षा का क्षेत्र देख लें, या सामरिक क्षेत्र देखें, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देशों के साथ हम जुड़े। हम लैटिन अमेरिका के देशों के साथ विगत 12 वर्षों में पहली बार इतना करीब गए, हम अफ्रीका के देशों के पास गए, इन देशों के पास बड़ी मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये अविकसित देश है। तो इनके साथ भारत ने एक रोडमैप बनाया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स अलग अलग देशों के साथ शुरू की, एशिया में हमने अपने पड़ोसियों के साथ और चीन जैसे देश के साथ में रिश्तों को सामान्य करने का प्रयास किया। हालांकि चीन की तरफ से जिस तरह से हमारी सीमाओं पर लगातार चुनौतियां प्रस्तुत की, तो वहां पर फिर हम चुप भी नहीं रहे। तो सबसे हमारी यदि विगत 12 वर्षों में मैं विदेश नीति की सफलता बताऊं, तो वो ये है कि हम एक तरफ राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ, लेकिन विश्व बंधुत्व का दर्शन रखते हुए अलग अलग देशों के साथ अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मल्टीपोलैरिटी को, मल्टी अलाइनमेंट को, वैश्विक सुरक्षा शांति को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर चीन जैसे देश जब आकर हमारी सुरक्षा के लिए कोई खतरा उत्पन्न करते हैं, या पाकिस्तान जैसा देश जो आतंकवाद को लगातार पल्लवित पोषित करता है, तो फिर वहां

0: भारत सक्षम, समर्थ और सशक्त रूप से जवाब भी देता है। तो इसमें चुनौतियां तो निश्चित तौर पर आती हैं जब पाकिस्तान जैसा देश हमारे सामने हो, जो अपने प्रॉक्सीज को या आतंकवादी संगठनों को लगातार एक्टिव करके आगे बढ़ाते हुए भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां उत्पन्न करने का काम करता हो। लेकिन दूसरी ओर द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर हमने जो साख बनाई, जो सफलता आ गई, जिस तरह से दूसरे देशों की सहायता की जब उन पर जरूरत पड़ी, तो फिर यहां पर इन चुनौतियों का समाधान भी हम निकाल पाने में सफल रहे हैं।
1: बिल्कुल, जाहिर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कामयाबी भारत को हासिल हुई उसके बारे में अंशु जोशी जी बता रही थी। अब हम रुख करते हैं एमपी नथैलस साहब का। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मोर्चे पर अगर हम बात करें, इंटरनल सिक्योरिटी के मसले पर, तो पिछले 12 सालों में हुए बदलावों को आप किस तरह से आंकते हैं और इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे?
2: जो इंटरनल सिक्योरिटी का जो अभी एनवायरमेंट है, ये आप देखेंगे पहले काफी डिस्ट्रिक्ट में माओइस्ट का काफी प्रभाव पड़ा हुआ था, जिसके वजह से वहां पर डेवलपमेंट बिल्कुल रुका हुआ था। लेकिन अब जो है, पिछले कुछ सालों में इतना जोर दिया गया माओइस्ट को खत्म करने के लिए, और सबसे बढ़िया बात तो ये रहा कि हमारे गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर दिया कि 31 मार्च तक 2026 में एक बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। तो इसको मद्देनजर रखते हुए सीआरपीएफ और अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफी जोर लगाकर, खासकर छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में जितने भी आतंकवादी थे, इनके पीछे बड़े पैमाने पे ऑपरेशन लगाए और उन ऑपरेशन में कई माओवादियों को मार गिराया, और उनको मार गिराने की वजह से इनका मनोबल इतना नीचे गिर गया कि करीबन 5000 माओइस्ट पिछले 2 साल के अंदर अपने आप खुद आके सरेंडर कर गए। और सबसे बढ़िया ये इसका प्रभाव रहा कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम निकाला, स्कीम निकाला, जिसमें कि उनको 50,000 रुपए दिए जा रहे थे, उसके अलावा उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी और मकान दिए जा रहे थे। इनके वजह से काफी तादाद में माओइस्ट अपना जो जंगल में रिहाइश थी वो छोड़ के बाहर आए और सरेंडर कर दिए फोर्सेस के सामने, जिसके वजह से माओइस्ट का बिल्कुल खात्मा हो गया है। और यहां इनके नेता भी जो थे, वो भी कई नेता, बड़े बड़े नेता जो कि पहले बड़े कट्टर आतंकवाद थे, उन्होंने आगे आकर अपने आप आत्मसमर्पण किया और इसके वजह से माओस तकरीबन खत्म ही हो गए। अभी केवल एक ही बचा हुआ है झारखंड में, जो कि पॉलिट ब्यूरो का मेंबर है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले कुछ दिनों में वो भी मारा जाएगा या वो खुद सरेंडर कर लेगा, क्योंकि अब उनको भी पता है कि अब यह चलने वाला नहीं है। उन्हीं के कई फॉलोअर्स सरेंडर कर चुके हैं और ये मिसर बेसरा के पास केवल कुछ ही आदमी बच गए होंगे जो कि सेरेंडा फॉरेस्ट के जंगलों में घूम रहे हैं, और ऑपरेशन भी कोबरा के बड़े जोरों से जारी है और कुछ दिनों में ये मारे जाएंगे या खुद सरेंडर कर देंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में करीबन 8000 जो मिलिटेंट्स थे, इंसर्जेंट्स थे, उन्होंने खुद सरेंडर किया, जिसमें कार्बी अंगलोंग के इंसर्जेंट्स थे, बोडोस के इंसर्जेंट्स थे और आसाम के भी इंसर्जेंट थे, और उसके अलावा मणिपुर में जो यूएनएलएफ के इंसर्जेंट थे, सबने सरेंडर किया है। और उनके सरेंडर करने के बाद काफी मात्रा में वहां पर हथियार खत्म हो गए और इंसिडेंट भी खत्म हो गए, और उस वजह से काफी वहां पर शांति फैलाया गया उस इलाके में, और उसके वजह से डेवलपमेंट भी काफी जोरों से चल रहा है, और इन डेवलपमेंट्स के वजह से लोगों को बहुत फायदा चल रहा है। पहले ये डेवलपमेंट वगैरह रुके हुए थे क्योंकि आतंकवाद ने काफी जोरों से वहां पर कब्जा मार के रखा हुआ था, और इसको खत्म करने के बाद अब डेवलपमेंट जारी हो गई है, सड़कें बन रही हैं हर जगह, कनेक्टिविटी बढ़िया बन रहा है, और करीबन 70 से 80 एयर स्ट्रिप्स भी रिवाइव कर दिए गए कई जगहों में, और जिनके वजह से अब वहां पर एयर फ्लाइट्स भी शुरू हो गए हैं। अब लोगों को काफी सुविधा पहुंच रही है कि वो एक जगह से दूसरे जगह, नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं दूसरे जगहों में भी आराम से सफर कर सकते हैं।
1: इसके अलावा आप ये भी समझना चाहेंगे कि घरेलू मोर्चे पर अपने रक्षा उत्पादों

0: में हम किस तरह से और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में डिफेंस सेक्टर का जो बजट है वो बड़े पैमाने पर बढ़ा है, तो उत्पादन किस तरह से हो रहा है जो भारत को और मजबूती की तरफ आगे बढ़ा रहा है?
1: इसमें तो कोई शक नहीं है कि कई जो इक्विपमेंट्स है वो इंडिया में ही बनाए जा रहे हैं और आत्मनिर्भर को अपने फोकस में रखते हुए तकरीबन 38,400 करोड़ का जो है एक्सपोर्ट वो अब जो है शुरू कर दिया गया है। हमारे यहां से हथियार बन रहे हैं और ये एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। उसके अलावा पहले जो हम हथियार मंगा रहे थे बाहर से उसमें भी काफी गिरावट आई है। करीबन 5,500 डिफेंस आइटम्स जो पहले हम बाहर से मंगाते थे वो हमने मंगाना बंद कर दिया और अपने ही देश में इन सब का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। तो इससे बहुत बड़ा फायदा हमारे देश के इकोनॉमी को हो रहा है और उस वजह से जो युवक हैं उन लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना में। तो इस तरीके से काफी नौकरियां अभी लोगों को मिल रहे हैं। 15 लाख जवानों को इससे काफी फायदा हो रहा है। आज ही के दिन करीबन 2,400 करोड़ वर्थ इंसेंटिव दिए जा रहे हैं।
0: बिल्कुल, अब रुख करते हैं प्रोफेसर जोशी का। मैम, आपसे समझना चाहेंगे कि पिछले 12 सालों में भारत को एक रिएक्टिव नेशन के बजाय एक प्रोएक्टिव नेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तमाम उदाहरणों का जिक्र किया आपने कि एक जो ग्लोबल साउथ की एक प्रभावशाली आवाज बन रहा है भारत, साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की भी पहल भी मानवीय दृष्टिकोण से एक अच्छा उदाहरण माना जाता है। तो इन सब चीजों का एक फायदा अगर हम एक राष्ट्र के तौर पर देखें भारत को, तो वो किस तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है?
2: आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु चर्चा में जोड़ा, क्योंकि अक्सर हम अपनी विदेश नीति की सफलता की बात करते हैं, हमने किस प्रकार के की नीतियां बनाई और किस तरह से विश्व के अलग अलग कोनों में जाकर के किस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर मित्रता के नए प्रतिमान स्थापित किए, हम इस पर तो बात करते हैं, पर इसके जो आउटकम्स हैं उसकी चर्चा करना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुछ ऐसे टेंजिबल आउटकम्स हैं जो हमने अर्जित किए। उदाहरण बताती हूं कि किस प्रकार से यूरोपियन यूनियन ने पिछले दिनों भारत के साथ मदर ऑफ ऑल डील साइन की, जिसमें बड़ा महत्वपूर्ण एफटीए है और इसके साथ साथ एक हिस्टोरिक डिफेंस पैक्ट भी यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ साइन किया और ये एशिया में भारत दूसरा देश है जिसके साथ ही डिफेंस पैक्ट ईयू ने साइन किया है। अब इस एफटीए के अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्रकार से सकारात्मक टेंजिबल दृष्टि से आउटकम्स इसके निकल के आएंगे और इससे हमारे एक्सपोर्ट्स डाइवर्सिफिकेशन को तो बहुत उछाल मिलती हुई दिखाई पड़ती ही है। प्रोफेशनल मोबिलिटी की दृष्टि से भी हमारे पास, हम इस वक्त दुनिया की जो यूथ आबादी है, हमारे पास 22% जो यूथ पॉपुलेशन है उसका हमारे पास शेयर है। यदि हम प्रोफेशनल्स की दृष्टि से देखें तो स्किल्ड प्रोफेशनल्स का और यंग फोर्स का हम देश है, वी आर अ यंग नेशन। तो यूरोप के इन देशों को इसी प्रकार के स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है। तो आप देखिए, अपने एक्सपोर्ट्स में इजाफा, इन्वेस्टमेंट्स में इजाफा, हमारा जो बायलेटरल और मल्टीलेटरल ट्रेड है ईयू के सदस्य देशों के साथ उसमें इजाफा, तो निश्चित तौर पर रेवेन्यू जनरेशन में और एफडीआईज में इजाफा, तो इससे ओवरऑल जीडीपी में बढ़ोतरी। और फिर इसके साथ साथ जो एक रोजगार की बात आती है, क्योंकि हम एक बहुत हेविली पॉपुलेटेड देश है, तो उसमें फिर हमको एक सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ती है। और ऐसा हम अलग अलग, यदि आप यूएई के साथ के अपने एफटीए को और हमारी व्यापारिक डील को देखें तो वहां पर भी प्रोफेशनल मोबिलिटी इज इन द सेंटर। आप यदि अभी हमारे साथ, हमारी मर्कोसुर के साथ जो कि लैटिन अमेरिका का एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग ब्लॉक है, उनके साथ भी एफटीए को लेकर के बातचीत लगभग फाइनलाइज है। पश्चिम एशिया के संकट की वजह से जीसीसी के देशों के साथ भी हमारा एफटीए लगभग फाइनलाइज था, थोड़ा सा वो मुझे लगता है थमता हुआ नजर आता है वहां की स्थितियों की वजह से, पर उसमें भी प्रोफेशनल मोबिलिटी और इन्वेस्टमेंट्स एक महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ। तो ये तो टेंजिबल आउटकम्स की बात हुई, मैंने एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों उदाहरण है। तो अब जैसे यदि मैं डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में जाऊं तो पहले हम एक नेट इम्पोर्टर देश के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अपनी सफल विदेश नीति के चलते आज हम एक एक्सपोर्टर देश बनके इस एक डिफेंस और सिक्योरिटी के क्षेत्र में उभरे हैं, जिसमें अपने आसपास के कई ऐसे देश हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में विशेषकर हमारे होम ग्रोन जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उनको देख करके और चमत्कृत थे, और भारत से उन्होंने हमारे जो होम ग्रोन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो दूसरे इक्विपमेंट हैं, वो लेना शुरू किया है। बहुत सुखद समाचार है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि कुछ हमारा जो मेक इन इंडिया का और विकसित भारत 2047 का रोडमैप है, तो कुछ इस प्रकार के आउटकम्स हैं। उदाहरण स्वरूप वैक्सीन

0: हमने 150 देशों को अपने यहां के वैक्सीन भेजे, तो उस समय के ब्राजील के, ये उदाहरण है, ब्राजील के जो राष्ट्रपति थे जैर बोल्सोनारो, उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने संजीवनी ले जाते हुए हनुमान जी का चित्र लगाया और हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद करते हुए कहा कि आप नहीं जानते आपने ब्राजील के लिए क्या किया। इसके बाद ब्राजील के साथ हमारा एक अलग स्तर पर स्ट्रेटेजिक डायलॉग और पार्टनरशिप शुरू हुई। तो हमने जब सोरल अलायंस और बायोफ्यूअल अलायंस की स्थापना की, इसका पायनियर किया, तो ब्राजील उसमें हमारा सबसे बड़ा सहयोगी देश बनकर के सामने आया। तो ये कुछ इस प्रकार के उदाहरण है कि जब हम इन्वेस्ट करते हैं अपने वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन के साथ, पॉजिटिवली किसी दूसरे देश के लिए अच्छा करते हैं, तो उसके कुछ ऐसे आउटकम्स आते हैं जो फिर हमारी जो ये लंबी सुदीर्घ विकसित भारत की यात्रा है उसमें हमें योगदान करते हुए नजर आते हैं। मैं अमेरिका का उदाहरण दूं, अमेरिका के साथ बहुत महत्वपूर्ण डोनाल्ड ट्रंप के पिछले कार्यकाल में लेमोवा, कॉमकासा और बेका नाम के लॉजिस्टिक सप्लाईज को लेकर के हुए बड़े महत्वपूर्ण समझौते हैं और अमेरिका ने अपना रियल टाइम सैटेलाइट एक्सेस भारत को देना शुरू किया जो कि ऐतिहासिक है। तो ये काउंटर टेररिज्म मैकेनिज्म्स की दृष्टि से देखें या अपने सामरिक क्षेत्र में अपर हैंड की दृष्टि से देखें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चाहे क्वाड का मंच हो, ब्रिक्स का मंच हो, एससीओ का मंच हो, इप्सा हो, तो I2U2 की हम बात करें, तो भारत जिस प्रकार से अलग अलग अपने इनिशिएटिव्स के चलते आगे बढ़ा है, तो उसमें ग्लोबल साउथ की हमने आवाज मजबूत की, एक पुल के रूप में हम पश्चिम के देशों के और ग्लोबल साउथ के देशों के बीच में एक साथी बन करके आए, और इसके अलावा हमने हमारे मेक इन इंडिया को प्रमोट करते हुए विकसित भारत 2047 की यात्रा के लिए बहुत सारे माइलस्टोन्स जो है वो अकम्प्लिश किए हैं।
1: और शायद यही वजह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में G7 की बैठक के दौरान जब प्रधानमंत्री से मुलाकात की तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पीएम मोदी को एक टफर निगोशिएटर कहा, क्योंकि जब तमाम बायलेटरल ट्रेड समझौतों की जब बातचीत हो रही तो भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भारतीय निर्यातकों के साथ जो है किसी भी तरह के लिए उनके लिए नुकसानदायक ये डील नहीं होनी चाहिए और भारत का सामान, मेक इन इंडिया सामान जो है बिकना, वही प्राथमिकता रही है प्रधानमंत्री मोदी की।
0: बिल्कुल निश्चित तौर पर, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं आपको धन्यवाद करती हूँ आपने इस बिंदु को भी चर्चा में जोड़ा, और यही कारण है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री को विगत 12 वर्षों में हम देख सकते हैं कि 30 से अधिक दुनिया के देशों ने सर्वोच्च उनके राजकीय सम्मान से नवाजा है। भारत की क्या साख है, भारत का क्या परचम लहरा रहा है दुनिया में, इस बात का ये प्रतीक है। और बिल्कुल टफ नेगोशिएटर है, तो मैं आपको उदाहरण दूं कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील की जब हम बात करते हैं तो उसमें लगातार अमेरिका की तरफ से दो बिंदुओं पर हम पर प्रेशर बनाया गया कि एक तो हम रशिया से तेल और गैस लेना बंद करें और दूसरा ये कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल जो सेक्टर है वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स के लिए खोल दें। तो चाहे आप पश्चिम एशिया के देशों या मंचों के साथ अपने FTAs को देखें, आप हाल ही में हुए EU के साथ के अपने FTA को देखें, आप दूसरे जो एक दर्जन भर के लगभग अपने FTAs हैं और अलग अलग जो सेपा है, कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक हमारे जो अग्रीमेंट्स हुए हैं कई देशों के साथ में, तो हमने इस बात को जब नेगोशिएशन के लिए स्टेक होल्डर्स बैठते थे तो इस बात को हमने स्पष्ट किया था कि हम अपना डेयरी और एग्रीकल्चरल सेक्टर किसी के लिए नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव सेक्टर है। हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े हुए जो हमारे भाई बहन हैं या जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, फिशरीज से जुड़े हुए जो भाई बहन हैं, उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। और इसके साथ साथ लघु और मध्यम उद्योग और विशेषकर जो भारतीय कला से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे नए नए बाजार मिल सके, उनको कैसे हम प्रमोट कर सकें, ये भी जब भी हमने आर्थिक और तकनीकी कूटनीति के हमने समझौते किए हैं या इसको लेकर हम आगे बढ़े तो वहां प्रधानमंत्री ने इसकी बात की है। तो आखिरकार जब अमेरिका के साथ भी ट्रेड डील अनाउंस हुई तो उसमें फिर ये बात स्पष्ट होकर के आई कि इन दोनों बिंदुओं पर भारत ने किसी प्रकार का नेगोशिएशन नहीं किया। और वहीं जैसे रूस से जो तेल और गैस लेने की बात है, सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड रेट पे हमें रूस से तेल और गैस मिल रहा था, तो हमको उर्सुला वॉन ने भी 2 या 3 साल पहले लगभग ये चेताया था कि हम रूस से तेल और गैस लेना बंद करें, लेकिन तब भी हमारे विदेश मंत्री ने इस बात को स्पष्ट किया था कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को केंद्र में रखते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का इस्तेमाल करते हुए वही डिसीजंस लेता है जो भारतीयों के हित में है। जब हम पर प्यूनिटिव टैरिफ्स लगाए गए, डोनाल्ड ट्रंप ने जब घोषणाएं की तो हमारे प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि भारत के लोगों को मैं इसका नुकसान नहीं उठाने दूंगा और मेरा व्यक्तिगत इसमें नुकसान हो सकता है, मुझे कीमत चुकानी पड़ सकती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। और इसके बाद भारत ने लगातार अपने जो ये तमाम सफल विदेश नीति से मित्र बनाए हैं, तो हमने इन सबसे सहायता ली, अपने एक्सपोर्ट्स को डाइवर्सिफाई किया, अपने एक मैक्रो इकोनॉमिक रेजिलियंस को फिर हमने बढ़ाया, और इसके चलते देखिए हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई ऐसा इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा। उल्टा हम पर जब प्यूनिटिव टैरिफ्स लगे और बड़ा हल्ला मचा था कि अब क्या होगा और नुकसान होगा और अब हम क्या करेंगे, लेकिन आप देखिए कि हमने 7% से ज्यादा और फिर 8% की क्वार्टरली हमने GDP ग्रोथ रजिस्टर की थी जो अपने

0: आप में एक ऐतिहासिक ग्रोथ रही। तो ये इस प्रकार से अलग अलग देशों के साथ में इस प्रकार के अलग अलग अकम्पलिशमेंट्स के साथ हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं।
1: अब हम रुख करते हैं एमपी नथालस आपका, उनसे पूछते हैं कि सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जिक्र किया कि तमाम नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रेड कॉरिडोर से ग्रीन जोन में बदलने की रणनीति अपनाई गई थी और वहां भी कामयाबी हासिल लगी, नक्सलवाद के खिलाफ सुरक्षा संवाद और समन्वय के भी परिणाम सामने आए। तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और तीन बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें,

0: परिणाम सामने आए, तो आपसे जानना चाहेंगे जो एक और तीन बड़े ऑपरेशन हुए थे, उरी का हम जिक्र करें, बालाकोट का जिक्र करें या ऑपरेशन सिंदूर जैसी कार्रवाइयों का, तो ये तीन जो बड़े एक्शन रहे हैं, इसको भारत की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इन ऑपरेशन ने किस तरह से परिभाषित किया और क्या मायने आप देखते हैं यहां पर जो एक एक्शन रहा?
1: इसमें सबसे बढ़िया चीज ये था कि जैसे ही वो कहीं इस तरह के वारदात कर रहे थे, जैसे कि अटैक किया उन्होंने कॉन्वॉय सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर, उरी में अटैक किया और उसके बाद जो पहलगाम में अटैक किया, हमने तुरंत उसका जवाब दिया। ये नहीं कि हम रुके रहे सोचते रहे क्या करना है, लेकिन तुरंत अटैक करके हमने उनको साबित कर दिया कि इस तरीके के हरकत अगर आप करेंगे तो हमारा कार्रवाई एकदम जवाबदारी होगी। और इसमें खासकर जो पहलगाम अटैक हुआ था जिसके बाद ऑफ सिंदूर चला, उसमें करीबन 100 जो आतंकवाद टॉप के उन लोगों को मार गिराया और कई उनके आतंकवाद के जो बेस अक्रॉस द बॉर्डर थे वो भी खत्म कर दिए गए। हमारे एयरक्राफ्ट में जाके वहां पर अटैक किया और उनका खात्मा किया, जिसके वजह से उनमें काफी ढीलपना आ गया, अब वो ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे। और इसके अलावा ये भी है कि जब भी वो कोशिश करते थे पहले बॉर्डर से क्रॉस करने के लिए, काफी बार सफल हुए। मैं खुद वहां श्रीनगर में रहा हूं, गए दिन हमारे एनकाउंटर होते रहते थे। अब जो है हालात काफी सुधर गए हैं और सुधरने की वजह से ये है कि वहां पर डेवलपमेंट भी शुरू हो गया है और यहां तक कि डेवलपमेंट ट्रेन भी चलने लगे हैं, राइट फ्रॉम जम्मू से लेकर बारामूला तक चल रही हैं। पहले ये सब हम सोच नहीं पाते थे। और उसी तरह नॉर्थ ईस्ट में भी अगर आप देखें तो मिजोरम कनेक्ट हो गया रेलवे से। पहले हमें सिलचर जाना पड़ता था, सिलचर से फिर बाय रोड जाना पड़ता था। अब जो है रोड कनेक्टिविटी इतना बढ़िया हो गया थ्रू रेलवे कि लोग सीधे ऐजवाल तक पहुंच सकते हैं दिल्ली से लेकर वहां तक। तो ये जो कनेक्टिविटी है इससे काफी बड़ा फायदा हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी इसमें सुविधा पहुंची है। इसके अलावा ये है कि जब भी वहां से कोई कार्रवाई हो रही है तो उसका हमारा इंटेलिजेंस जो है इतना रोबस्ट हो गया है कि हमें सब पता चल रहा है कि वहां पर अक्रॉस द बॉर्डर क्या हो रहा है और उसी वक्त कार्रवाई कर दी जा रही है ताकि उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। तो इससे काफी लाभ पहुंच रहा है और आने वाले दिनों में ऑलरेडी हमारे गवर्नमेंट कह रही है कि कश्मीर में काफी पीसफुल सिचुएशन है, अभी अमरनाथ यात्रा भी होने वाला है, काफी तादाद में फोर्सेस पहुंच रहे हैं वहां पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहां पर कई जिलों में जहां आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगा हुआ है वो भी हटा दिया जाएगा, क्योंकि इतना वहां पर शांति फैल चुका है कि AFSPA की बाद में जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
0: सर, क्योंकि आपने तमाम बॉर्डर पर सुरक्षा के लिहाज से अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं, इसलिए आपसे ये जानना जरूरी हो जाता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को जो लोग पालते पोसते थे उस दौर में या आज से एक दशक पहले की अगर हम बात करें, 12 साल पहले की बात करें, तो उस रुख को आप किस तरह से बदला हुआ आज पाते हैं?
1: पहले ये था कि हमारे पास इंटेलिजेंस का थोड़ी सी कमी थी, लेकिन अब जो है इंटेलिजेंस इतना हमारा रोबस्ट हो गया है कि जैसे ही उनका कोई कार्रवाई वो वहां से करने की कोशिश करते हैं उससे पहले ही हम उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं ताकि वो हमारे जवानों पे या हमारे इलाके के अंदर आके हमला ना कर पाए।
0: इतने दिनों में भारत की एक नई डिफेंस कैपेबिलिटी भी सामने आई है, हम चाहे मेक इन इंडिया की बात करें या जिस हिसाब से डिफेंस इक्विपमेंट भारत में बनाए जा रहे हैं, तो ये अब इनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में होने लगा है, क्योंकि भारत की शक्ति पूरी दुनिया को दिखाई दे रही है। इस पे आप कितना ज्यादा जो है इजाफा मानते हैं कि दुनिया के देशों में निर्यात कितना ज्यादा बढ़ा है, उस मोर्चे पर कितनी सफलता मिली है?
1: ये जो ऑपरेशन हुआ था ऑपरेशन सिंदूर, इसमें पाकिस्तान ने भी काफी अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इनके जितने भी अटैक करने की कोशिश की गए वो सब विफल कर दिए, क्योंकि हमारे पास जो था एयर डिफेंस सिस्टम काफी रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसके वजह से उनके जितने भी अटैक्स हो रहे थे वो विफल कर दिए गए और हमें ज्यादा उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन अगर ये हमारे पास डिफेंस सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं होता जो कि शील्ड जैसे बन गया था तो हमारे लिए काफी मुश्किल हो सकता था, लेकिन इस एयर डिफेंस सिस्टम के वजह से हम लोग उनको रोक पाए और वो नुकसान नहीं कर पाए।
0: प्रोफेसर जोशी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो भारत की उभरती हुई वैश्विक भूमिका विकसित भारत की तरफ है, इसमें आपको क्या लगता है कि विकसित भारत के लक्ष्य को किस तरह से गति मिल रही है और आने वाले दिनों में जो एक लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत बनने का, उसे हम किस तरह से पूरा होते हुए देखेंगे?

जब हम अपने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को देखते हैं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत की जो सफल विदेश नीति है, विगत 12 वर्षों में हम जिस तरह से एक ऑल अलाइंड पॉलिसी पर चले हैं, इसने कैटलिस्ट की भूमिका निभाई है। तो भारत के यदि हम आर्थिक विकास की ओर देखें, तकनीकी प्रगति की ओर देखें, वैश्विक सुरक्षा, अपनी आंतरिक सुरक्षा की बात करें, तो हमारी विदेश नीति जो है इसके माध्यम से हम इनसे जुड़े हुए लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए लगातार अपने विकसित भारत 2047 के रोड मैप पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जब कूटनीति को हम देखते हैं तो वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर बेस्ड है, मल्टी अलाइनमेंट पर आधारित है। हम किसी एक देश की हेजेमनी की नहीं बल्कि मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे वैश्विक राजनीति में लोकतंत्र को बनाए रखना है और साथ साथ हमारे देश का विकास हो और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता मिले। तो यदि हम अपने आर्थिक मोर्चे पर जाएं और अपनी आर्थिक कूटनीति की बात करें तो विकसित भारत 2047 को यदि हम देखते हैं तो हमारी विदेश नीति का एक बड़ा जो फोकस एरिया रहा है वो FDI रहा है। किस तरह से हम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को बढ़ावा दे सकते हैं, मैंने लगातार अलग अलग FTAs का उदाहरण दिया जिनके माध्यम से इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं द्विपक्षीय स्तर पर, बहुपक्षीय स्तर पर। फिर यदि हम तकनीक की दुनिया में चले तो चाहे AI की बात करें या हम डिजिटलाइजेशन की बात करें, तो AI समिट का ग्लोबल साउथ का भारत पहला देश है जिसने इस बार होस्ट करते हुए एक बड़ा कार्यक्रम नई दिल्ली में आयोजित किया जिसमें देश विदेश से कई राष्ट्राध्यक्षों ने शिरकत की और AI को लेकर के जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस फ्रेमवर्क बनाने की बात चल रही है उसमें भी भारत एक प्रणेता की भूमिका निभा रहा है। फिर आप सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में चले, क्रिटिकल मिनरल्स की दुनिया में चले, तो इन सब में अपनी विदेश नीति के माध्यम से हमने जो नई मित्रताएं लैटिन अमेरिका और अफ्रीकन देशों के साथ जोड़ी है, आगे बढ़ाई है, उसके माध्यम से हम इस लक्ष्य की पूर्ति कर पा रहे हैं क्योंकि ये विकसित भारत की यात्रा का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है। तो इसके जरिए हमारे जो भारतीय उद्योग हैं वो मजबूत होते हैं और जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है उससे हम अपने उद्योगों को जोड़ते हुए एक यहाँ पर अपना एक बड़ा लक्ष्य हासिल कर पाते हैं। फिर हम ग्लोबल साउथ की आवाज प्रणेता बन के जो उभरे तो उसमें जो लगातार हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों का डेमोक्रेटाइजेशन हो और अंतर्राष्ट्रीय मंचों में वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं, इसमें जो ग्लोबल साउथ की इमर्जिंग इकोनॉमीज है उसके नेतृत्व की बात करते हैं, इसको आज पूरी दुनिया अपना समर्थन दे रही है, चाहे यूरोप के शक्तिवान देशों को आप देखें या लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया के हमारे समकक्षी देशों को देखें। तो UNSC जैसे संस्थानों में भारत लगातार भारत जैसे देशों के नेतृत्व की मांग कर रहा है और अपनी स्थायी सदस्यता के लिए तो अभी जैसे हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा पर गए तो वहां स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ने इस बात को फिर पुरजोर तरीके से रखा कि भारत को UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए। तो एक वैश्विक समर्थन जो है वो आज हमें हासिल हुआ है और ये विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है हमारे लिए कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी नेतृत्व की भूमिका बढ़े। फिर यदि हम अपनी सुरक्षा की बात करें, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करें, तो आसपास एक फ्लक्स की सिचुएशन है, दो युद्ध चल रहे हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी लगातार तनाव बना रहता है, इन सबके बीच हमारी जो विदेश नीति है वो किस प्रकार से लगातार हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रहे और अभी पश्चिम एशिया की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जिस तरह से ईरान ने बंद किया और पूरी दुनिया ने संकट को झेला, 40% लगभग तेल, गैस और LPG पूरी दुनिया को सप्लाई होता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के माध्यम से और कुल जरूरत का 80-90% अपना तेल, गैस और LPG चीन, जापान, साउथ कोरिया जैसे देश मंगाते हैं। हमने लगातार 27 देशों की बजाय 41 देशों से तेल, गैस और LPG मंगाने का हमने पिछले 12 वर्षों में ये काम किया और अपनी जो ऊर्जा आयात हमारा जो है उसको हमने डाइवर्सिफाई किया। तो हमने अपनी इस प्रकार की डायनामिक ऊर्जा पॉलिसी के चलते ऊर्जा सुरक्षा हम बरकरार रख पाए तब जबकि दूसरे देशों में 40-60-70% तक की मूल्य वृद्धि हुई। आप देखिए कि भारत में 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हमारी एनर्जी सिक्योरिटी इंटैक्ट रही, ऑयल गैस की हमारी निर्बाध आपूर्ति लोगों को मिली। फिर मैरिटाइम सिक्योरिटी जो है उस पर एक विशेष हमारा ध्यान है, हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनके उभरे हिंद प्रशांत क्षेत्र में और हिंद महासागर क्षेत्र में। हमारे प्रधानमंत्री ने मॉरिशस की धरती से पहले सागर डॉक्ट्रिन प्रस्तुत किया जो कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल था। फिर जब दोबारा मॉरिशस की यात्रा की तो उन्होंने महासागर नीति रखी जो कि म्यूचुअल एंड होलिस्टिक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल है। तो तमाम हिंद महासागर के जो लिटोरल देश हैं और जो इनडायरेक्टली जुड़े हुए देश हैं वो सब आज भारत को प्रणेता मानते हुए भारत से जुड़ रहे हैं और हम इन देशों के साथ साझा विकास भी कर रहे हैं। और फिर विदेशों में जो अपने भारतीय प्रवासी हैं जो हमारे लिए, हमारी GDP के लिए एक बड़ा
कहीं ना कहीं योगदान तो करते ही है, हमारी संस्कृति के वाहक हैं, एम्बेसडर्स हैं, तो उनकी सुरक्षा, उनके सशक्तिकरण को भी हमने एक प्राथमिकता दी है। तो आप देखिए, जब जब अलग अलग विश्व में हमने संकट देखे, वहां भारत ने तुरंत इवैक्यूएशन प्लान्स लॉन्च करके भारतीयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया, और जो भारतीय वहां पर रह रहे थे, उदाहरण स्वरूप रशिया यूक्रेन वॉर में, उनको तुरंत भारत वापस लाने की पहल और सफलतापूर्वक इसका भी अकम्प्लिशमेंट हमारी विदेश नीति की वजह से हो पाया। जब हम विकसित भारत 2000

0: 2040 के सामरिक लक्ष्यों को देखें, आर्थिक लक्ष्यों को देखें, तकनीकी लक्ष्यों को देखें, वैश्विक मंचों पर आगे बढ़ने के लक्ष्य को देखें, तो अपनी विदेश नीति के माध्यम से हम लगातार अपने विकसित भारत के विजन को, मिशन को साकार कर पा रहे हैं।
1: आखिर में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो राष्ट्र प्रथम की नीति रही है भारत की, और शायद वही एक वजह है जिसकी वजह से दुनिया भर में जहां भी प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, अपने नागरिकों की बात करते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं, तो ये एक नीति इसने देश के नागरिकों में आत्मविश्वास और राष्ट्रीय गौरव की भावना को किस तरह से और कितना मजबूत किया है, क्या मानते हैं?
0: ये जब हम इस नीति को देखते हैं या इस पूरे फिनोमेना को देखते हैं, तो ये हमारी विदेश नीति का एक आधार स्तंभ है जिसमें हम राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और नागरिक कल्याण की बात करते हैं। तो हमारे जो लोग हैं वो हमारी डिप्लोमेसी के एपिसेंटर में हैं और इसके माध्यम से हम किसी के दबाव में नहीं आते, स्वतंत्र निर्णय लेते हैं और विश्व मंच पर अपने हित की तो बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की भी बात करते हैं, लेकिन हम इस बात को सुनिश्चित रखते हैं कि देश विदेश में जो अपने लोग रह रहे हैं, भारतीय प्रवासी जो हैं, उनकी सुरक्षा और उनके विकास को हम आगे बढ़ा सके। और इसमें फिर हम देखिए एक संतुलन बना के रखते हैं और इसके जरिए हम अलग अलग जो स्वभाव के देश हैं उनके साथ अपने पारंपरिक और नए तरीके के संबंधों को आगे ले जा रहे हैं। संकट के समय हम दूसरे देशों की तो सहायता करते हैं, लेकिन इस बात को भी सुनिश्चित करते हैं कि हमारे लोग किसी संकट में ना फंसे। तो ये हमारी नेशन फर्स्ट की प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा उदाहरण है कि संकट में फंसे हुए भारतीयों को हम सुरक्षित रूप से स्वदेश लेकर के आते हैं। सबसे बड़ा बिंदु आतंकवाद पर जिस प्रकार का रुख पिछले 12 वर्षों में भारत ने अपनाया है, जीरो टॉलरेंस टूवर्ड्स टेररिज्म, तो ये अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता है। ये नेशन फर्स्ट की बात है, ये पीपल फर्स्ट की बात है और इसमें एक बहुत ही गजब का समन्वय हमने अपनी डिप्लोमेसी और अपनी रक्षा शक्ति के बीच में एस्टेब्लिश किया है और इसके चलते, इस नेशन फर्स्ट की बात के चलते आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी बड़ी दृढ़ता से रखा है।
1: बिल्कुल। तो अंशु जोशी जी और एमपी नाथाले साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे मोदी सरकार की राष्ट्र प्रथम की नीति पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे सीआरपीएफ के पूर्व महानिरीक्षक एमपी नथैनियल और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर अंशु जोशी। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे पत्रकार सौरभ शुक्ला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रवि कपूर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।

0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि यह बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन ने सुरक्षित, सुदृढ़ और समावेशी इंटरनेट पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता पर बल दिया है। श्री कृष्णन ने कहा कि डिजिटल प्रौद्योगिकियां रोजमर्रा की जिंदगी और आर्थिक गतिविधियों का अभिन्न अंग बन गई हैं। नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया निक्सी के 23वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल नीति का ध्यान इंटरनेट पहुंच के विस्तार से हटकर उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल अवसंरचनाओं को सुरक्षित करने पर केंद्रित हो गया है। मंत्रालय के सचिव ने कहा कि प्रौद्योगिकी द्वारा ही उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने ऑनलाइन नुकसान को कम करने और उपयोगकर्ता विश्वास को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनव समाधानों को लागू करने के निक्सी के प्रयासों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के दौरान श्री कृष्ण ने निक्सी की 4 नई डिजिटल पहलों का भी शुभारंभ किया। IX पोर्टल, माई IRINN पोर्टल, .IN ऑक्सन पोर्टल और एक AI संचालित हुज स्क्रीनिंग प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने, परिचालन दक्षता बढ़ाने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भारत इंटरनेट इकोसिस्टम में निगरानी के लिए डिजाइन किए गए। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: नमस्कार, आज अंतिम मुख्य संवाद सह उदयनाथ स्वाई। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2400 कोटी टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान कले। प्रधानमंत्री कहले विश्वस्तरीय अभिवृद्धि और स्वावलम्बी हेबा दिगरे अग्रसर होउछन्ती देशर युवपीढ़ी। ओडिशार मयूरभंज जिल्लारे पहुंची विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यक्रम शुभारंभ कले राष्ट्रपति। झारसुगुड़ा जिल्लारे आसंताकाली 25,000 कोटी ऊर्ध्व टंकार कोयला गैसीकरण प्रकल्प शिलान्यास करिबे प्रधानमंत्री। पोष आईनर कार्यकारिता सुनिश्चित करने नहीं समस्त राज्य को जातीय महिला कमिशन पक्ष परामर्शवली जारी। पश्चिमबंग गस्त कर आसंताकाली पीएम किसान सम्मान निधि 23तम किस्ती प्रदान करिबे प्रधानमंत्री। नीट पुनः प्रवेशिका परीक्षा समय सामाजिक गणमाध्यम आप टेलीग्राम उपरे केन्द्र सरकार प्रतिबंधक को यथार्थ कहले दिल्ली हाइकोर्ट। छात्र छात्री स्वतंत्र व्हाट्सएप चैनल आरंभ कला एनटीए। राज्यर विभिन्न कॉलेज रे स्नातक नामलेखा सीट संख्या वृद्धि। रक्तहीनतार कारण और निराकरण उपरे जनसचेतनता सृष्टि करी आज पालन विश्व रक्त शिकुली दिवस। भारत एवं आसियान सीमापार आतंकवाद समेत सब् प्रकार आतंकवाद को दृढ़ निंदा कर। सक्रिय मौसुम वायु प्रभाव में राज्यर अधिकांश स्थान में सामान्य मध्यम वर्षार संभावना। बिजली घड़घड़ी सह वर्षा संभावना नहीं 9 जिला आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्ष सतर्क सूचना जारी। नमस्कार, शुभरात्री।

0: ଶେଷ ହେଲା ସଜଫୁଲ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ମହମ୍ମଦ ଆବିଦ ଏବଂ ନମ୍ରତା ମହାନ୍ତି। ଗୀତ ରଚନା କରିଥିଲେ ମନୋଜ ମହାନ୍ତି। ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ମିଶ୍ର। ଆକାଶବାଣୀ କଟକ।
1: ମନ୍ କି ବାତ୍ ହେ ଜନ ଜନ କି ସଭି କି କୁଛ ଅପନି ସି ସଂଘର୍ଷୋଁ କେ କୁଛ କିସ୍ସେ କାହାନୀ କୁଛ ସଫଲତାଓଁ କି ଅନକହୀ ବିରାସତ କି ଉମ୍ମୀଦେଁ ନୟେ ଭାରତ କି ମହିନେ କେ ଆଖରି ରବିବାର କା ରହତା ହେ ଇନ୍ତିଜାର ମଲ୍ୟାଚଲ କେ ଆଂଚଲ ସେ ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଲ କେ ଆଙ୍ଗନ ତକ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର କେ ଘାଟ ସେ ହିମାଳୟ କେ ବିସ୍ତାର ତକ ହୋତୀ ହେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେ ସାଥ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की सभी की कुछ अपनी सी संघर्षों के कुछ किस्से कहानी कुछ सफलताओं की अनकही विरासत की उम्मीदें नए भारत की महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

0: भी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लोकंक सरकारंकर 2 वर्षर गौरवमय सफलतार यात्रा एबे देछि ओडिसाकु सफलता।
4: बिहनरु बजार, संग्रहरु बंटन, समस्तंक हितरे लोकंक सरकार। समृद्ध कृषक योजनारे चासी भाई भौनी मानकु वर्धित हाररे एमएसपी मिलुछि। त्वरित एमएसपी प्रदानरे ओडिसा देशरे प्रथम। सीएम किसान योजनारे चासी परिवारकु आर्थिक सहयोग। मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजनारे आकर्षणीय सब्सिडी। मत्स्य उत्पादन ओ रप्तानीरे राज्यर उल्लेखनीय अभिवृद्धि।
3: समृद्ध ओ सशक्त ओडिशा पाई विकासर प्रतिश्रुति ओ जनसेवार प्रतिबद्धता। युवा शक्तिंक दक्षता, नेतृत्व ओ क्रीडा प्रतिभा विकास पाई व्यापक कार्यक्रम।
4: विकासर मूल मंत्र सुदक्ष मानव संबल, दुर्नीति मुक्त शासन।
3: विकासर धारा ओडिशा सारा।
5: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
6: किछि अंतरंग कथा और किछि मीठा गीतर मूर्छना को नहीं आसंत आरंभ करिबा आजिर सकाळ मूर्छना जहारना गीत गीतिका। श्रोताबंधु, आम देश भारत जाति धर्म वर्ण निर्विशेषरे आम समस्ते भारतीय एवं समस्ते आमर जातीयता को नहीं गर्वित, कारण जाति वीरर जाति। जाति ख्याति ऐतिहास संघति आउ एकतार मंत्र गाउथिबा ए जाति। अतीतरे सारा विश्व देखिछि ए जातिर पराकाष्ठा प्रतिबद्धता। संकट समय किपरि ए जाति मुकाबिला करि विजयर ध्वजा उडैछि, एहा समग्र विश्वपाई एक विस्मय। निज प्राणको खातिर नकरि माटी पाई आम माटीर वीर वीरांगना किपरि देशर स्वाधीनता पाई बलिदान देइछन्ति ताहा आम जाति इतिहासर स्वर्णिम पृष्ठारे लिपिबद्ध हो रही। सही स्वर्णिम पृष्ठार अन्यतम अध्याय झानसीरारी लक्ष्मीबाई आज समग्र जाति चिरस्मरणीय।

0: क्यों श्याम भाई आज ये खुशी किया बैग पूरा भर्ती चाउल आनी लो कौठ।
1: हाँ भाई नुआ सरकार को अन्नपूर्णा योजना कथा सुनिन कि आम परिवार रो प्रति सदस्य को पाई एबे पराउ 5 किलो नुह मुंडो पिछा 10 किलो चाउल मागुण रे मिलिलानी घरे घरे एबे खुशी रो लहरी भाई।
2: मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना 3 कोटी रो अधिक ओडिसा वासी को मिलुछि खाद्य सुरक्षा। ओडिसा सरकार आपणक सुख दुख रो साथी।
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ।
4: मशीन रे लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करिन थिलो कि
3: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ। एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु।
5: जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओम्बड्समैन पाखरे अभिजोग करंतु। आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु सतर्क रहंतु।
6: चासिंग को पाई अनन्य पदक्षेप और योजना अपणैछंती लोकंक सरकार। चासिंग को समृद्धि पाई समृद्ध कृषक योजना सीएम किसान कृषि उद्योग और कामधेनु योजना देछि नूतन शक्ति और नूतन सुजोग।
7: समृद्ध कृषक योजना रे चासी भाई भौणी मानंको वर्धित हार रे एमएसपी सीएम किसान योजना रे आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कृषि उद्योग योजना रे आकर्षणीय सब्सिडी मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और मुख्यमंत्री कामधेनु योजना भली उन्नतिमूलक योजना सहित मत्स्य उत्पादन और रप्तानी रे ओडिसा रो उल्लेखनीय अभिवृद्धि होईछि।
6: ए सब सहित बुणाकार और कारीगर मानंकु सशक्त करुछि मुख्यमंत्री वरिष्ठ बुणाकार और कारीगर सहायता योजना मुख्यमंत्री बयन शिल्प विकास योजना मुख्यमंत्री रेशम विकास योजना भली लोक कल्याणकारी योजना द्वारा लक्ष लक्ष चासी परिवार हेउछन्ति उपकृत।
7: विकासर धारा ओडिसा सारा।
8: श्रोता बंधु 1857 सिपाही विद्रोहर नेतृत्व मध्य नेथिले झांसी राणी लक्ष्मीबाई। तांक सहित थिले तांतिया टोपे नाना साहेब को परी मुक्ति संग्रामी। 1858 मसीहा जून 18 तारीख रे इंग्रजों सह युद्ध से गंभीर भाव आहत हुई शेषे शहीद होइगले। राणी लक्ष्मीबाई निजर अदम्य साहस एवं असीम दृढ़ता एवं अपूर्व वीरत्व पाई ए जाति पाखरे चिरदिन नमस्य होइ रहिगले। नेताजी सुभाष बोस कहिथिले नारी शक्ति एक प्रचंड शक्ति ताको उपेक्षा करा जाई न पारे। जेते दिन पर्यंत मातृशक्ति राष्ट्रीय संग्राम रे जोग न दे सेते दिन पर्यंत ए देश स्वतंत्र होई नाही। नेताजींकर एही उक्ति एवं झांसी राणी लक्ष्मीबाईंक आदर्श अनुप्राणित होई ए देशर अनेक वीर रमणी भारतीय मुक्ति संग्राम रे जासतले एवं आम देश स्वाधीन हैला।

0: कालू, ए कालू, उठ ना। ए जंगल टा भीतरे एमती केते बळे जाय सोई रहिबु जे। देखे बेळा आसी मुंडे ऊपर हेलानी, बेळा बेळी घरे पहुंचिबा ना नाही कहिलु। आस आस उठ, आउ ए काठ गोछा को मुंडे रे रख।
1: ओहो टिके चुप रहिलो बला।
0: उठ मा,
1: घर को जीवा पे काई एमती तरबर होचु जे, घर को जाई एमती कोन करि पकेउ सुने। अरे देख
0: कौन देखिबी,
1: देखुनु हे जंगल केडे सुंदर।
0: कौन कहिलु ए जंगल सुंदर? तते एठी भय लागुनि, घर दर छाडी एठी रहिबा को मन करिचु ना कौन बा?
1: हौ तो कथा मानिली, चल चल एथरो घर को जीवा, चल
0: चल चल।
1: हेले हुबी
0: कौन
1: घरे आमर कौन अच्छी कहिलु?
0: कौन नाही जे,
1: भंगा ददरा कांथ बाड़, असराय बरसा हेले कणा चाळरु झरझर होई पानी निगुडुची। एटा कोडे घर हुबी?
0: कौन कहुचु?
1: मो कथा तते खराब लागुचि ना?
0: काहे की खराब लागिबो तो कथा जे, जाहा को जेमिति रखिबे अनंत, एई कथा को मन रे हेचुनु। विधाता आम भाग्य रे जाहा लेखि देइछंती सेति किरे शांति होबा कथा, ताहि त आम पई ठीक। ए राजा मो पाख को टिके आस ना।
1: राजा हेलो
0: कहली पर हसना ते
1: हेलो मु पुड़ी राजा हेलो बाहा दस वर्ष बीती गला दिने नाई कि काले नाई ये हटा तो मो पाई एमिति प्रेम कोठु निगिड़ी पड़ला बा।
0: अरे मजा करुनी रे, सत्य कहुची मो पाख को टिके खुंची आसे, आउ टिके एठी किछि समय बसिबा। खाली हसु
1: अरे ये की प्रकार नुआ पवन बहुची बा। आसली तो पाख को आसली। अच्छा कौन कहू कौनु
0: कालू, गोटे कथा पचारिबी? तू ठीक ठीक कहू ना? सत कहिलु भगवान आमको सतरे कोन किछि देई नांती?
1: हां देई नांती काहे की?
0: आउ
1: खूब देइछंती, बहु कष्ट रे देह लोचेबा पई चिरा लुगा, सबु दिन अधा पेटरे रहिबाकु पखाळ गंडाय देइछंती। कहिलु होबी
0: को कथा?
1: एमितिका बंचिबाटा को कोन जीवन बोली कहिबा?
0: काहे की ए जीवनटा कोन खाइबा आउ पिंधिबा पई?
1: हेलो धन संपत्ति कथा छाडे कहिलु, आमो कोळो को एजाए छुआटी कोन आसिला? माटी रे घसी चालुथुवा सापर छुआ अछि, आकाश रे उड़ुथुवा पक्षीर शावक अछि, पानी रे पहरुथुवा माछर भी जाळ अछि। हेले
0: मोर एजाए कोनसी पिला पिली हेलानी बोली सेइति पई मो उपरे रागुछु ना तू?
1: अरे ना ना ना ना ना ना, सेमिति भावना कर ना तू।
0: आ कोन कहुछु जे?
1: सत कहुछु होबी, तो उपरे मोर मोटे राग नाही, मो राग केवल मो जेजे बापा उपरे।
0: काहे की?
1: किंतु कौन करिबी, जेजे तो एबे भी संसार रो चली जाई, ऊपर वालांक दरबार रे भद्र लोकंक भलिया बसी जाई थिबो।
0: जेजे को उपरे तोर राग कोन पई? मु तो किछि बुझी पारुनी।
1: ते गुटी लंबा कहानी।
0: कहानी को कहानी?
1: हाउ केबे बेळा होले तते से कथा सुनेबी, चल।
0: नाही एबे सुनाउनु।
1: अरे बेळा हलाणी परा, चल एबे जंगल रु बाहर जिबा चल।
0: हाउ
1: ने ए टांगेटा धरलु
0: दे,
1: ए काठ को छको मुंडौची, मु मुंडो ऊपर टिके टेकी देलु।
0: उठिली
1: दे दे दे,
0: ने ने ने।
1: हां हां हां
0: हां, चल ए कालू। बाटरे चालू चालू मते सुनाना से कहानी।

0: राजा क्या पालो नहीं गला जाऊ जाऊ मो पालटी गले गोटे थंटा शाखाहीन पत्रहीन आउ फूल फलहीन वृक्षटी कौन हैला कौन हैला रे उबी ए कौन हैला तू के कांदुचो मोड़े चाहिलो देख देख मो तो कांदुनी मो डाळा पत्र हणा ही जेते बेले तळे पडिला सेते बेले तोर सी जेजे ससुर बुढ़ा डाळा तळे चापी ही मरिगला मो तो क्रोधरी थिले मो मोर अभिशाप बाहरिगला तो वंश निपात ही जाऊ राजार संतान मध्य नष्ट हो जाऊ अवश्य एमिते अभिशाप देवाटा मो पक्षे उचित नथिला हेले कौन करथांति मो निजक निजे संभाली पारिलेनि
1: तमे ए कौन कल मा अपराध कला कि आ दंड भोगिला अन्य जने एबे कुह मा ए अभिशाप रु केमिति मुक्ति मिलिबो आमि राजा हेबा योग्य पुओ जाहुना आमो उपरे दया कर वृक्ष माता आमको केवल साधारण संतान टे दे दियो एतिकी कामना
0: ठीक अछि जदि मु मो जीतरे अटल रहिबी प्रतिशोध परायण हेबी तेबे जने वन्यजीवी आ स्वार्थी मनुष्य जाति भितरे की प्रभेद रहिबो व्यस्त हना तो स्वामी आसीब आ मते निश्चय वंचाई दब कह तोर की प्रकार संतान दरकार जन्मदायिनी कन्या संतान ना पालन पोषणकारी पुत्र संतान
1: मा मते जन्मदायिनी कन्या संतान दान कर मा
0: झियो चाहुचु काहे कि
1: झियोटी ही पालन पोषणकारी पुरुष को जन्म दबा को सक्षम एहा सत ना मा
0: सबस हुबी सबस तू तो मो हृदय को पूरा जेनी नेलो तू बड़ बुद्धिमती
1: मा
0: एपट को चाहे देखिलु तो स्वामी युद्ध विजेता सेनापति भले केमिति छाती फुले आसुची लगुची सफल ही फेरुची बोधे ता कांध उपरे तो पानी माठियार भार प्रभु ही मु बंची गली तति मु आशीर्वाद करुची होबी तोर कन्या संतान हेबो आ मध्य से भाग्यवती हेबो
1: माता।

0: भोने भाग्या कांदना तू नहीं जा तू नहीं जा
1: अप्पा मुको भासरे मो दुख कहिबे को मोरी मागी भी भाभी पारुनी
0: मागी बो मते बुझी गले तू पुणी थरे दिव्य प्राण नबा को आसी छु ना भाग्या तू रानी हि जीवा परे मो एथि पई बहुत खुशी थिली जे मो संतान मानकर मंगल हबो मात्र मात्र ए स्वार्थपर मनुष्य जाति पखरे कहारी कल्याण पई इच्छा नाही सेमानकर प्रबल लोभ लालसा औ आकांक्षार तृष्णा कदापि दमन हबनी मोर देबा न देबार कथा एबे उठुछि कोठी राजांकर कर्मचारी माड़ी आसिबे जोर जबरदस्त मो वृक्षर फल छिंडे नेबे सेमानक ठारु रक्षा पाइबा पई ओ पखरे कोन शक्ति अछि एमिति एक दिन थिला देशरे राजवंशधर बंची रहिले देशर वनस्पति सुरक्षा पाउथिले किंतु किंतु एबे एहा प्रमाणित हेगला जे राजशक्ति जंगलर रक्षक हेबा बदलरे भक्षक पालटि जाइछि मो प्रकृतरे बड़ मूर्ख मो मार अज्ञानता आउ अभिज्ञतार मोर किछि शिक्षा करिवार थिला से सुजोग त मोर हात छड़ाई जाइछि हेबे भाबिले कोन हब ओ कांदना भोनी तू बिचारी कौन बा करी पर था तो
1: मुझे क्षमा कर दियो पा आओ मात्र थरुटे मते सहाय्य कर तुमको ये भली परिस्थिति आओ केबे पकेबिनी मु पछे के जीवन दे देबी हेले तुम गर्भपति कदापि आ जानिबे को देबिनी
0: ठीक अछि कह केतेटा फल नबो
1: पापा मोर मात्र गोटे फल दरकार अन्य फलटी तुम निज पाई रख
0: हौ मो परे आस्ते आस्ते पानी छिंचे सावधान रे फल तोलिने
2: मौसा ए मौसा तेने चाहो राणीमा माटी ऊपर पड़ी छटपट होचंती
3: हे भगवान जहा जणा पड़ुची राणीमा शिशु को जन्म दउचंती
2: ताहले शीघ्र चल मौसा आमे तांको पाखरे पहुंची जीवा दरकार हे भगवान ये तो गोटे पंगु शिशु महाराणी उठंतु महाराणी मौसा महाराणी तो चेता हरी पड़चंती एबे आमे कौन करिबा जे
3: प्रभु विपद भंजन हरि दया करो प्रभु दया करो चंपा तू हेठ था मु पालिंग पाकु जाउची महाराज को पाकु तुरंत खबर जीवा दरकार
4: भाग्य मो केल्हा छियो ठीक ठीक मु आसीची तो मां हुपी
5: ये तो दिव्य फल प्रदान करे वृक्ष माता आंकर एमिति अवस्था किए कला
4: भाग्य वृक्ष माता कर ए अवस्था पाई तु हि दाई
5: तोर मस्त बड़ अपराध हो गला
4: हे वृक्ष माता तुम देह रे लागितबा सब आघात को मु मो पणत कानी रे पोछि दउछि
5: एति कि छोडा मु आउ कोन बा करि परिबी मां
0: कोन बा मु आउ कहिबी देख तुम पाखरे तुमर जामाता ए राज्यर राजा ठिया हेचंती तांको पचार जहा किछि कहिबाकु आ सुनिबाकु छि से कहिबे
6: मां महा अपराध हे गला मां कृपा करी क्षमा करी दियंतु
0: चुप हे जा राजा चुप हे जा ए क्षमा शब्दटा भीषण मारात्मक
5: मां तुम पाखरे एतेटा निष्ठुर हवा शोभा पाउनी तुम भौणी परा तळे पड़ी जंत्रणा पाउजी छटपट होउजी
0: मु भल रूपे जानिछि जेतेबेले तुम मानकर स्वार्थरे आंच आसे लोभ लालसा आसे सेतेबेले मोर आवश्यकता पड़िथाय नहले मते किए कोन खातिर करे
4: नहीं मा नहीं हे वृक्षमाता तुमको पणत पाती भिक्षा मागुची केवल ए थरुटिए मात्र
6: हे माता देशर मंगल निमन्ते ए थरुटिए मात्र क्षमा करि दियंतु भविष्यतरे एमिति फूल आउ कदापि हबो नै
0: तुमे मनीष जाति सतरे केते चतुर मु भल रूपी तुम मान को चिन्ह गले जेते मु छटपट ही मरुली सेते मत मरवा देलनी जबरदस्त बंची रखिल मु अति सरल बोली मोर भूल हेगला मो प्रति तुम बात्सल्य ममता किंतु प्रकृत रे तुम नीच स्वार्थ
5: वृक्षमाता मुझिपारि तुम फल मोर लोड़ा ना
4: केवल केवल एतिके विनती करुची तुम भौणी भाग्या कथा कही पारुनी तार कन्या मो नातुणी पंगु ही जन्म हेजी
5: एसबू आम पापकर्मर फल

0: सबु किछि तुम दया उपरे निर्भर तमे चाहिले समस्तंक प्राणदान दे परिबो किछि करो मा किछि करो
1: अवशेषरे समस्ते उपलब्धि करचंती जे समस्त प्राणी जगतर कल्याणकारी ओ पर उपकारी हेचंती वनस्पति जगत ठीक अछि मो जा कहुछि सेहि परि कर
0: हो मा
1: मो देहरु जेउ रस झरुछि ताकु नै तो झियो आ नातुणी देहरे बोली दे दुहे सुस्थ हिजबे
0: तमि सतरे केते उदार वृक्ष माता तम करुणार पटांतर नाइ मु एखनी तम रस तांकटी बोली दउछि
1: देख होबी तो झियो आ नातुणी चेता फेरी पाइलेनी
2: मा मा
0: मो झियो मो भाग्य मो पाखको आसिलु टिके मा
2: मा
3: भाग्य देख देख भाग्य केते सुंदर हेछि आमो झियो हे पूजनीय वृक्ष माता तुमर अपार करुणा आमर चिरदिन मने रहिबो एबे मते आदेश करू तुमा तुम पई मु कोन करि परिबि तुमर आज्ञा मोर शिरोधार्य
1: तेबे सुन राजा तुमे मने मोर जो शेष फल दुईटी तोली नै छ से दुईटी को राजमहलर पछपट बगीचारे रोपण कर सेथिरो दुईटी वृक्ष जात हेबो से दुईटी वृक्ष रे वर्ष सारा फल फळिबो से फलरो पुनी सह सह मंजी बाहरिबो चारिआडे से मंजी को पोति आहुरी अधिक फल गछ उत्पन्न कर एणिकि से फलर नाम रखिबो भौणी फल कण मने रहिला
3: हाँ, तुम आदेश अक्षर अक्षरे पालित हब वृक्ष माता
1: मु कामना करुछि देश सारा एही फल फळु थाउ सारा देश समृद्ध हो समस्त तृप्ति ओ संतोषरी रहन्तु
3: तहाई हब मा तहाई हब
4: वृक्ष मातांकर
5: जय
4: वृक्ष मातांकर
5: जय।

0: आकाशवाणी कटक
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून।

सुबह 11 बजे मन की बात। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन

0: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ
1: मशीन रे लुगा पकेबा पूर्वरु चेक करी नथिलो कि
0: बदलाओ बदलाओ अभ्यास बदलाओ एबे निकटस्थ बैंक जाई फटा पुराना नोट बदलांतु
2: जदि बैंक मना करे तो आरबीआई रो ओंबड्समैन पाखरे अभिजोग करंतु आरबीआई कहे सचेतन हुवंतु सतर्क रहंतु
3: अच्छा दास बाबू आपनको घरटा 1970 रे तयार हितला राइट हले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केम जे अछि
4: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सैथि पाई मु सेते बेले मोर विश्वास रखितली एवं आजि मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
5: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस
6: कस्टमर केयर तरफ रु फोन आसीथिला कहुथिले तमरो 50,000 रिवार्ड पॉइंट्स एक्सपायर हे जिवो ए लिंक पर थी एपीके डाउनलोड करिनियंतु
7: ठीक लागुनी स्कैम भी हे पारे

0: क्लिक करंतु नहीं साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 मने रखंतु एसबीआई सचेतन रहंतु सुरक्षित रहंतु
1: अच्छा दास बाबू आपनको घरटा 1970 रे तयारी थिला राइट हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि
2: अरे

ससहला अभलागित आकाशवाणी कटक शुणंतु दंड नाच गीत परिवेषण करिसेंती स्वप्नेश्वर बेहरा एवं साथी।

बने तुम बने एक दूजे के लिए कथाचित्र एक दूजे के लिए अनुरोध करी श्रोता हेले डीह साहि कादुआपड़ा जगतसिंहपुर प्रमोद कुमार साहू गीतटी गाई एसपी बालसुब्रमण्यम।

अक्षय कुमार महांती एवं अनुराधा पोडवाल कंठरे शुणंतु कार्यक्रम परवर्ती गीत कथाचित्र दंडाबाळुंगा गीतटी हेउछि सहररे लागिजिबो निया शुणिबा पई अनुरोध करी एसएमएस करिछंती जिगरण पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ारु सोमनाथ साहू।